ये दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश, आपली माणसं.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज है कहानियां, कई देशों के संघर्ष.

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब हम दुनिया में किसी से दोस्ती करते हैं तो हम उसकी बाहरी सूरत देखते हैं, उसका शरीर देखते हैं, उसकी संपत्ति या उसका नाम देखते हैं। हमारे लिए किसी अदृश्य या अमूर्त चीज से रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि केवल स्थूल चीज़ों को ही पकड़ना जानती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह जो हमारा हाड़ मांस का शरीर है वह बहुत भारी है, इसकी अपनी सीमाएं हैं। यह एक समय पर केवल एक ही जगह रह सकता है, लेकिन जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है वह तत्व कितना सूक्ष्म होगा, वह कितना स्वतंत्र और व्यापक होगा। कबीर साहब आज हमें अपने उसी परम सूक्ष्म और सर्वव्यापी दोस्त का पता बता रहे हैं, जो पानी, धुएं और हवा से भी ज़्यादा बारीक और गतिमान है। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम वैज्ञानिक और दार्शनिक सूत्र। पानी हेते पातला, धुआ हीते छीण। पानी हेते पातला, धुआ हीते छीण। पवन बेगी उतावला, सो दोस्त कबीर किन।

0: श्रोताओं, कबीर साहब परमात्मा के निराकार और सूक्ष्म स्वरूप की महिमा गाते हुए कहते हैं, पानी हेते पातला, मेरा वह जो अदृश्य मित्र हैं वह पानी यानी जल से भी ज़्यादा पातला यानी सूक्ष्म और तरल हैं। पानी तो फिर भी बर्तनों में समा जाता है, लेकिन वह तत्व इतना बारीक है कि उसे कोई बांध नहीं सकता। धुआं ही ते झीण, वह धुआं यानी धुएं से भी ज़्यादा झीण यानी झीना अत्यंत महीन और पारदर्शी है, जो हर कण के आर पार निकल जाता है। उसकी गति और सर्वव्यापकता को समझाते हुए कबीर अगली पंक्ति में कहते हैं, पवन बेगी उतावला, वह पवन यानी हवा के वेग से भी ज़्यादा उतावला यानी तीव्र गतिमान और तात्कालिक है। हवा को तो बहने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उस परमात्मा का होश और उसकी उपस्थिति इतनी त्वरित है कि आप यहाँ याद करें और वहाँ वही हाजिर हो जाता है। सो दोस्त कबीर किन, कबीर कहते हैं कि मैंने किसी साधारण इंसान से नहीं बल्कि परम सूक्ष्म और सर्वव्यापी और चैतन्य तत्व से अपनी सच्ची दोस्ती कर ली है। यह दोहा उपनिषदों के अनोर्णीय महतो महियान, जो अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है, के सिद्धांत की लोक भाषा में व्याख्या है। वेदांत दर्शन में ब्रह्मा को अतींद्रिय कहा गया है, यानी जिसे आँखों से देखा नहीं जा सकता, हाथों से छुआ नहीं जा सकता। कबीर यहाँ पानी, धुए और पवन के प्रतीकों से चेतना की सूक्ष्मता को समझा रहे हैं। परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ राजा नहीं है, वह तो हवा से भी ज़्यादा करीब, धुएं से भी ज़्यादा सूक्ष्म और पानी से भी ज़्यादा निर्मल होकर हमारे ही भीतर धड़क रहा है। कबीर समझा रहे हैं कि ऐसे सूक्ष्म दोस्त मिलने के लिए हमारी बुद्धि और हमारे मन को भी उतना ही हल्का और सूक्ष्म होना पड़ेगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा विचार कीजिए कि हम विधाता को कहाँ ढूंढ रहे हैं। हम उसे पत्थरों में, गुफाओं में या आसमानों में खोजते हैं, जबकि वह तो हवा की तरह हमारे ही चारों तरफ और हमारी हर सांस में समाया हुआ है। वह हमसे एक पल के लिए दूर नहीं है। आज कोशिश कीजिए अपनी चेतना को थोड़ा सूक्ष्म बनाने की, इस संसार के भारीपन को, चिंताओं को और अहंकार के वजन को नीचे गिरा दीजिए। अपने मन को पानी की तरह निर्मल और पवन की तरह हल्का कीजिए, तो आपको महसूस होगा कि वह राम नाम रूपी सूक्ष्म दोस्त आपकी हर धड़कन में पहले से मौजूद हैं और आपको अपनी बाहों में थामे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: श्रोते हो, रेडियो मन भावन च्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 या क्रमांकावर, किंवा व्हाट्सअप करा 9922337361 या क्रमांकावर।
2: बा तथागता यथार्थ का अन्वेषक, अस्तित्व का खोजकर्ता, विज्ञान की सकारात्मकता को गतिमान करने वाला, सत्य सत्य और मात्र सत्य अन्वेषक, क्रियान्वयनकर्ता, संपूर्ण सजीवों की उत्पत्ति चार घटकों, पृथ्वी आप तेज वायु से बनी है, इस वैज्ञानिक सत्य से ही सजीव के अस्तित्व का बोध चेतना से होता है और चेतना की ऊर्जा के कारण मनुष्य चित्त के घटक स्कंद होते हैं, संज्ञा, विज्ञान, संस्कार और वेदना। इनसे बनता है मन, अंतर्मन। अंतर्मन के साथ पंच स्कंध से बनता है सजीव शरीर। मोमबत्ती एक महत्व का प्रतीक है, ऊर्जा और चेतना समझाने का। प्रज्वलित मोमबत्ती से चेतना और ऊर्जा का संयोग स्वरूप दृश्यमान होता है। पृथ्वी, यह तत्व अत्यधिक महत्व का है। अवयवों का एक संघ रहना पृथ्वी घटक के कारण ही है, अन्यथा ऐसी स्थिति हो गई होती जैसे दो ठूंठ की होती है भेंट। कभी अवयव विघटित मिलन कुछ ऐसा ही हो गया होता बिना पृथ्वी घटक के। तेज या अग्नि, यह तो ऊर्जा प्रदान करता, चेतना का ऊर्जा वाहक। सजीव अवशेष का अस्तित्व तेज के कारण ही। ये हवा बहुत अनमोल, प्रतिक्षण एहसास दिलाती जीवन जीने की प्रक्रिया का। निरोगी तन मन पेशी के कारण अन्यथा सड़ गया होता शरीर कर्क रोग सम हवा के अभाव में। यह ज्ञान विज्ञान का नियम संपूर्ण सजीव के लिए लागू है। मनुष्य, पशु पक्षी और लताएं, वृक्ष, फूल, फल, फसल आदि सभी के लिए लागू। चेतना और ऊर्जा नियम अस्तित्व के लिए समुच्चय रूप से। विद्युत और चुंबकियों का अपरिहार्य संयोग। चेतना प्रविष्ट होती है शरीर में, होता है अस्तित्व चेतना का। सदा विश्व में चेतना का व्यापक रूप समाहित होता है शरीर में। संज्ञा, विज्ञान, संस्कार एवं संवेदना। मृत्यु समय चेतना का विज्ञान पटिसंधि हो जाती है। मूल विज्ञान चेतना से मृत्यु के समय 16 चित्त, 16वें चित्त की पटिसंधि। नवीन संस्करण के साथ पुनर्भवात। मनुष्य के प्रत्यक्ष जीवित होने की प्रतीति दृश्यमान होती है श्वास के कारण। प्रतिक्षण श्वासों का आना जाना शुरू रहता है। आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास नहीं होता या नहीं दिखाई देता शरीर और मन के भीतर। आत्मा के संदर्भ में अनेक युक्तिवाद हुए हैं, कुछ शास्त्रीय, कुछ तार्किक। एक युक्तिवाद बड़ा चर्चित है, कहते हैं आत्मा कैसी है, आकार से गोल या चौकोर, त्रिकोण, अष्टकोण या षटकोण। आत्मा का स्वाद कैसा, मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, फीका। कहें आत्मा का रंग कैसा, लाल, हरा, पीला, काला, नीला, सफेद या केसरिया कैसा। अनुत्तरित है ये सारे प्रश्न आत्मा के संदर्भ में। एहसास नहीं होता। मुनि कपिल के तत्वज्ञान की अन्वेषणानुभूति प्रत्यक्ष में या अनुमान सत्य से। आत्मा का अस्तित्व नापेंगे कैसे, उसका परीक्षण करेंगे कैसे, देखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। यानी आत्मा के अस्तित्व के संदर्भ में शंका। तब पुनर्जन्म किसका, आत्मा के अस्तित्व की सुविधा कर्मकांड की वृद्धि के लिए तो नहीं, अथवा मानव समूह को भ्रमित

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हैप्पीनेस के इंडेक्स को हम देखते हैं तो आज भी हमें लगता है कि इंडेक्स जो है वो अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है। हमारी मंजिल क्या है, क्या हम उसे स्टेबिलिटी पर ला सकते हैं, एक इस लेवल पर ला सकते हैं अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को? कोशिश यही कर रहे हैं इस पूरी श्रृंखला में। सबसे बड़ी बात, हमारे जो पहला प्रयास है वो ये कि कम से कम इसको देख तो पाए कि दिन भर में हम जो है ऊपर नीचे अपने इमोशंस के साथ होते हैं, खासकर हैप्पीनेस के साथ होते हैं। मंजिल तक पहुंचते जाएंगे जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे। आज भी कुछ और बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है जो मुझे टेक ओवर कर जाता है और फिर मेरी अपनी हैप्पीनेस जो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ वो नहीं क्रिएट कर पाता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, सिचुएशन जब थी, हमारी ये आदत कैसे बनी कि सिचुएशन ने हमें टेक ओवर किया? आई होप आई एम राइट बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि सिचुएशन आई, हम पहले डिटैच रहते हैं, उसके बाद हम जजमेंटल होना शुरू होते हैं लोगों के प्रति या अपने प्रति भी, और उसके बाद हमारी सारी इमोशंस जो हैं वो पूरी सिचुएशन टेक ओवर कर जाती है। व्हाट टू डू नाउ?
1: वन इज़ तो इसको वॉच करना ही शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और प्रैक्टिस करें कि जैसे एक ड्रामा देखते हैं या एक मूवी देखते हैं तो हम ऑडियंस में बैठते हैं ना, ऑडियंस से बैठकर वहां देखते हैं कि स्टेज पर क्या हो रहा है। इस तरह से जीवन की यात्रा में भी चलते हुए ऑडियंस भी बनते जाएं बीच बीच में, यू नो इट इज़ अ लिटल वी हैव टू प्रैक्टिस हाउ दैट। लेकिन होता क्या है कि हम स्टेज पर भी हैं, सो हम एक्टर भी हैं, लेकिन एक्टर के साथ साथ हमें क्या बनना
0: है, व्यूअर,
1: ऑडियंस भी बनना है। क्यों ऑडियंस बनना है? कि ऑडियंस बनने से हम डिटैच्ड होते हैं, यू नो आई एम एन ऑडियंस, ये सब ड्रामा चल रहा है, ऑल द एक्टर्स आर प्लेइंग द रोल, तो डिटैच होकर उनको देखें, जजमेंटल होकर नहीं। जैसे ही जजमेंटल हो गए तो हम उनके रोल के अंदर उनके साथ।
0: That's what I'm saying, as an audience also, I was becoming a part of the whole thing.
1: As a detached observer, साक्षी होकर हरेक के रोल को देखते जाएं। जैसे ही आप साक्षी होकर हरेक के रोल को देखेंगे, आपका माइंड कैसे होता जाएगा? It will become still. उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। और साक्षी होकर दूसरों के रोल को देखते हुए फिर जब अपना रोल प्ले करेंगे तो वो रोल कैसे होगा? You know, then I will be a creative actor. कि मैं जो अपना रोल प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मेरा माइंड स्टिल है, स्टेबल है, तो क्रिएटिव है। एक डिस्टर्ब्ड माइंड क्रिएटिव नहीं हो सकता। अभी जब हम ऑटोमेटिक मोड में चल रहे थे तब ये था, आपने जो कहा या जो किया वो मेरे ऊपर इफेक्ट आया, तो मेरी अपनी क्रिएटिविटी
0: कुछ भी नहीं,
1: उसमें कुछ भी नहीं थी। Did I have the power to say to myself कि irrespective of उन्होंने जो बोला है I can remain stable? No. I said नहीं, ये तो natural है, उन्होंने बोला तो मुझे बुरा लगेगा। तो मतलब मेरे पास पावर नहीं थी कि मैं अपने रोल को कैसे प्ले करने वाली हूँ। मेरा रोल डिपेंडेंट था
0: उनके कहने,
1: आपके रोल पर, कि आप अपना रोल कैसे प्ले करेंगे, उस हिसाब से मेरा रोल तो अपने आप ही बनता ही जा रहा था। अब अगर अपने सारा दिन को देखें कि हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या हम क्रिएटिवली उस रोल को प्ले कर रहे हैं या हमारा रोल अपने आप ही बनता जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू पीपल? तो वो क्यों? क्योंकि हम हर एक के रोल में इतना घुसे हुए हैं और उनके रोल पर इतने जजमेंटल हो रहे हैं कि उस टाइम पर हम अपने रोल को क्रिएट करना भूल जाते हैं।
0: जब हम फिल्म ही नहीं देख पा रहे, जब हम ड्रामा ही नहीं देख पा रहे, वो जज यू नो एक व्यूअर के रूप में, एक साक्षी भाव से, तो हम अपने जीवन में तो
1: आज सारा दिन अगर एक बार ट्राई करें, सिर्फ एक दिन, क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम किसी के भी रोल को, क्या कहें, किसी को भी जज नहीं करते आज एक दिन? एक दिन नहीं करते,
0: अच्छा है, वो गंदा है, वो एक्टिंग कर रहा है,
1: कुछ भी नहीं, या उनको ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं, एक दिन नहीं करते। हमें करना है या नहीं करना है, लेकिन ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन डे। अच्छा, इवन इफ वन डे इज टू मच फॉर यू, जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन आवर। आपको एक दिन ज्यादा भारी लग रहा था क्या?
0: क्योंकि हमें पता था कि पूरे दिन में हमने बहुत सारे लोग ऐसे आने हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे आनी है जो हम भूल जाएंगे।
1: तो एक घंटा इज पॉसिबल ना, तो एक घंटा ये करके देखना कि यू नो जस्ट ट्राई टू क्रॉस दैट वन आवर विदाउट गोइंग हर एक के बारे में, हर एक के बारे में, हर एक सिचुएशन के बारे में. एंड जस्ट एट द एंड ऑफ दैट वन आवर जस्ट सी हाउ यू फील. आप कैसा फील करते हैं वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हो रहा है वो ये कि हर एक के रोल के अंदर आई गेट सक्ड, यू नो, आई गेट सक्ड इनटू योर रोल. यू शुड बी लाइक दिस, यू शुड नॉट बी लाइक दिस, यू शुड स्पीक लाइक दिस, यू शुड बिहेव लाइक दिस. I could be saying this, but even if I'm not saying, I'm thinking like this. Mm-hmm. You know, बहुत सारी judgments हम बोल नहीं रहे.
0: Actually,
1: सोच तो सारा
0: मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी कि अभी एक घंटा जो हम देंगे उसमें अगर कोई सिचुएशन नहीं आई तब तक तो मैं ठीक ही रहूंगा, लेकिन उस एक घंटे में मैं सोचता भी तो बहुत कुछ.
1: बात सोचने की हो रही है. जजमेंटल इज नॉट अपने शब्दों में, जजमेंटल है यहाँ सोचने में. तो एक घंटा अगर ट्राई करे कि जो है जैसा है, everyone is okay, एक घंटा I am not going to judge. तो उसमें आपको एक घंटे के एंड में पता चलेगा आपकी बहुत सारी एनर्जी जो ऐसे ही ऐसे suck. You know, everyone is, we would say that everyone is sucking my energy like this. So it's not everyone sucking, I am giving my energy
0: out
1: to everyone. Yeah, I'm giving it out. And after giving it out, I feel empty. यहाँ खाली हो जाते हैं. और जब judgmental हो रहे हैं तो quality of thoughts positive भी नहीं है ज्यादा. It's more of हर एक की कमियाँ कमजोरियाँ बहुत ज्यादा हम देखते. तो ये मेरे ऊपर इम्पैक्ट डालेगी. एक एक की वीकनेस देखते देखते यहाँ हालत क्या हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द डे. तो अगर हम जो ये साक्षी भाव टीवी के सामने नहीं कर पा रहे हैं, इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं कि एक घंटा लेट मी जस्ट बी डिटैच्ड, नो वन एंड नो सिचुएशन विल अफेक्ट मी फॉर वन आवर. तो हमें पता चलेगा कि डिटैच्ड होने से कितना अंदर पावर भरती है. फिर जो सेकेंड स्टेज हम वॉच कर सकते हैं, जब मैंने आपको देखना बंद कर दिया तो मैं अपने को देखना शुरू कर देती हूँ. मैं यहाँ आई इवैल्यूएट के यहाँ क्या हो रहा है. आप जो लास्ट टाइम कह रहे थे ना कि अपने थॉट्स नहीं, हम आई कैन नॉट सी माय थॉट्स. व्हाई कैन नॉट आई सी माय थॉट्स?
0: सो मच आउट.
1: सी एट वन टाइम मेरा ध्यान एक ही पर जा सकता है. तो एक सेकेंड, अगर वो एक सेकेंड मैं आपके बारे में सोच रही हूँ तो मैं अपनी तरफ ध्यान नहीं देती. तो जब बहुत ज्यादा और चीजों के बारे में हम सोचते हैं तो ये अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता. थोड़ी देर के लिए यहाँ देखना शुरू करें.
0: एक घंटा, जस्ट वन आवर हम अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि सिचुएशन के बारे में भी तो सोच रहे होते हैं. लेकिन यहाँ से शिवानी,
1: फिर सोचेंगे क्या हो जाएगा? एक घंटा सोचेंगे,
0: फिर हम ना सिचुएशन रहे, ना लोग रहे, ना फिर अब क्या होगा?
1: इट्स नॉट सिचुएशन के बारे में या लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, जजमेंटल नहीं होंगे.
0: अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती तो अच्छा होता.
1: ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा. सी, वो ये भी हमें पता नहीं है कि हम कितने जजमेंटल हैं, क्योंकि हमने कभी
0: ध्यान नहीं
1: देखा नहीं है. तो जब देखना शुरू करेंगे ना, तब पता चलेगा, अच्छा अच्छा, आई क्रिएट दीज काइंड ऑफ थॉट्स अबाउट एवरीवन. राइट नाउ वी नॉट इवन अवेयर के व्हाट क्वालिटी ऑफ थॉट्स आई क्रिएट फॉर एवरीवन. सो वन डे इट्स नॉट दैट आई स्टॉप थिंकिंग. See, no one should do it unnaturally. Yes. Oh, मैंने कुछ नहीं सोचना है, मैंने कुछ नहीं सोचना है. आप अपना नॉर्मल चलो, जैसे आप चल रहे हो. सिर्फ ध्यान दो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उसको देखने की कोशिश करो. और जैसे ही आपको वो थॉट मिले कि मैं ये सोच रहा हूँ, इनको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, आई जस्ट स्टॉप एंड आई टेल माई सेल्फ इट्स ओके. For one hour, I am not going to create.
0: Yeah, ऐसा सोचें कि वो प्लीज ऐसा करे, because we have to be very, very clear. कि हमें क्या नहीं सोचना है.
1: एब्सोल्युटली. और हमें क्या सोचना है कि वो जो है जैसे है,
0: इट्स
1: ओके. एक्सेप्ट, एक्सेप्ट. एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि आई एग्री विद यू.
0: मैं कहने वाली थी कि फिर हम तो देखिए, इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, और मुझे किसी सिचुएशन को या किसी व्यक्ति को टोटालिटी में देखना होगा ना, क्लैरिटी में. मुझे उनके नेगेटिव भी देखने होंगे, पॉजिटिव भी देखने होंगे. सो अगेन, क्या मैं अपने आप को उनका नेगेटिव, क्योंकि होता यह है कि जब मुझे उनके बारे में जजमेंटल नहीं होना तो मैं ये कहूंगा कि मैं उनका नेगेटिव देखूंगा ही नहीं.
1: यू नो, इट्स नॉट, दिस इज अ गुड पॉइंट, बट इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इट्स ओनली दैट वी आर डिफरेंट.
0: Yeah, because there's nothing like negative.
1: We are different. मुझे जो चीजें अच्छी लगती हैं वो मैं अपने लिए पॉजिटिव की कैटेगरी में डालूंगी, और जो मुझे नहीं अच्छी लगती, I put them in the negative. Let's say for example, मुझे टाइम पर आना अच्छा लगता है, तो जो भी लेट आए वो मेरे लिए क्या है?
0: गलत हो गया.
1: नेगेटिव है. लेकिन वो एक्चुअली जो लेट आ रहा है उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है उस बात से. दे आर जस्ट कम्फर्टेबल विद द वे दे आर.
0: फिर कुछ चीजें ऐसी हैं शिवानी जो कहा जाता है कि जो सही ही है, यू नो, मर्यादाओं में रहते हुए, मतलब समाज में रहते हुए, ये टाइम पे आना तो इट्स अ
1: सी मर्यादाएं भी कौन बना रहा है. इवन इफ यू जस्ट सी द कल्चर इन द ईस्ट एंड यू सी द कल्चर इन द वेस्ट, आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखाई देगा. जब हम अभी लंदन गए रिसेंटली, सो हमने व्हाट डिड वी सी, वी सॉ दैट जो ट्रैफिक वहां पर चलता है वो बहुत स्मूथ चलता है. हम लोग रोड पर ऐसे खड़े थे क्रॉस करने के लिए, वो गाड़ी रुक गई एंड आई वाज लाइक, आई जस्ट आस्क्ड द सिस्टर, आई सेड हमने कुछ गलत किया है क्या, वो गाड़ी क्यों रुक गई? तो शी सेड वो गाड़ी रुकी है ताकि आप क्रॉस कर जाओ. नाउ दिस इज एन एलियन कॉन्सेप्ट फॉर मी, इट डजंट हैपन हियर. सो एवरीवन हैज क्रिएटेड देयर ओन कल्चर, देयर ओन वे ऑफ लिविंग. तो हम कहेंगे वहां ऐसा नहीं होता. नाउ इट्स नॉट अबाउट वो राइट है या इंडिया में जो होता है वो, दे जस्ट बोथ राइट फॉर देम, बट हम तुरंत जजमेंटल हो जाएंगे.
0: देखा
1: ये राइट है, वो वाला रॉन्ग है, या ये वाला राइट है. नो इट्स नॉट, इट्स जस्ट दैट इट्स डिफरेंट. जैसे हम राइट और रॉन्ग उसको लेबल कर देते हैं तो एनर्जी चेंज हो जाती है. सी इफ आई से यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी. बट इफ आई से यू आर रॉन्ग, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग. So when I create this thought about anyone, कि ये different है, it may be कि मेरे से match नहीं करता आपका वो संस्कार, आपका वो स्वभाव, आपका वो व्यवहार, लेकिन when I create a thought ये different है, I may not like it, but if I say this is wrong, this is bad, then what energy I send out to you? This is negative energy. This is lack of respect. This is lack of love, and this will create a disturbance here. If I acceptance means I agree, aap different hai, main different hu, I accept the difference. I don't resist the difference. I accept. Jab hum resist karte hain difference ko, to hum dusre ko apni tarah banane ki koshish karte rehte hain, kyunki humne judgment ye pass ki hai ki main sahi hu, aap galat hai. Between a parent and a child, ye bahut critical hai.
0: Even husband wife, you know.
1: Yeah. Yes. Parent and child, why I said, because parents बहुत ज़्यादा ये authority के साथ हर time हम चलते कि हम सही हैं, बच्चे गलत हैं. See, again, intention बहुत अच्छी है. कई बार intention बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको अगर हमें किसी को कुछ सिखाना है, मतलब उनको empower करना है ना, लेकिन अगर हम ये energy भेजते हैं कि you're wrong, you're bad, this is wrong, तो हम उसको empower नहीं कर रहे, हम उसको actually disempower कर रहे हैं.
0: कोई drugs ले रहा है या smoke कर रहा है या drink कर रहा है, how do we take it, you know? This is again, it's very difficult, because first thought which will come is that he needs to change, he needs to stop.
1: He needs to change is a different energy, and he is bad is a different energy.
0: Actually, I consciously tried to be, not create the thought, but the first thing which comes to your mind is, This is wrong.
1: अब क्या होता कि जो भी बच्चा ऐसा कुछ ले रहा है, बच्चे क्यों, बड़े भी ऐसे ले रहे हैं कोई, तो घर में पूरा वायुमंडल ये बन जाता, आप गलत हैं, आप बुरे हैं, ये पाप है, ये, you know, this kind of energy.
0: हमारा क्या होगा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, you know, it's like forget about, वो तो खैर है ही गलत, हमारी जिंदगी में हमारे ही बच्चे ने ये करना था,
1: तो फिर वो मेरी पेरेंटिंग स्किल पर भी तो क्वेश्चन मार्क उठ जाता है ना. तो ये जब हम एनर्जी, पहली बात, जो भी कुछ ऐसा कोई स्टिम्युलेंट ले रहा है उसके जीवन में कुछ थोड़ा सा तो वैक्यूम है, यू नो, समवेयर सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी लो है, एंड ये स्टिम्युलेंट्स मुझे उसको भरने में मदद करते हैं. लेकिन अब वो लो सेल्फ एस्टीम के साथ, वो कोई हर्ट के साथ, दर्द के साथ मैंने वो लेना शुरू किया, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी and supporting me and empowering me how to come out of my pain, सबसे मुझे क्या मिला, आप बुरे हो, आप गलत हो, आप ये
0: rejection,
1: हो, rejection मिला. मैंने actually वो लेना ही इसलिए शुरू किया होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो rejection की energy या hurt की energy थी. अब actually वो छोड़ने के लिए मुझे चाहिए होगा कि वो भरा जाए, वो जो मेरे अंदर का वैक्यूम है वो भरा जाए. लेकिन हमारी इंटेंशन बहुत राइट होती है, हम चाहते हैं कि वो बच जाए उन चीजों से, लेकिन हम उसके रूट को नहीं देखते हैं. हम ये देखते हैं कि ये ले रहा है, ये इसकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, तो हम उसको रोज कहते हैं ये गलत है, ये छोड़ दो. हम ये नहीं समझते ये क्यों ले रहा है, और वो जो रीजन जिसके कारण ये ले रहा है वो तो इससे भी ज्यादा बुरा है. अगर मेरे अंदर कोई दर्द है, वो दर्द तो इस स्मोकिंग से या अल्कोहल से भी ज्यादा बुरा है. ये स्मोकिंग और अल्कोहल मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, ओके, लेकिन वो जो दर्द मैंने पकड़ के रखा है, रिजेंटमेंट, वो मेरे लिए कितना हानिकारक है. तो आई जस्ट नीड टू गो वन स्टेप बिहाइंड. जेन्युइन लव है ना, कंसर्न है, तो क्या करें, एक स्टेप पीछे जाएं. ये स्टिम्युलेंस छूट जाएंगे अपने आप, लेट इट बी राइट नाउ फॉर सम टाइम. एक स्टेप पीछे जाकर ये क्यों ले रहे हैं, वैक्यूम है. तो इंस्टेड ऑफ उनको ये एनर्जी भेजें कि आप गलत हो, इफ़ यू कैन सेंड देम दैट एनर्जी ऑफ लव, ऑफ रिस्पेक्ट. हम कहते हैं लेकिन प्यार तो हम बहुत करते हैं ना, प्यार में हम बार बार ये नहीं कह सकते आप बुरे हो, आप गलत हो, ये पाप है. ये दूसरे को डिसएम्पावर करता है. आप उस बात को साइड रखो कि वो क्या ले रहे हैं, आप इग्नोर कर दो, इवन इग्नोर कर दो आप उसको थोड़े दिन के लिए. आप सिर्फ उसके वो दर्द को भरो जस्ट बाय गिविंग जेन्युइन रिस्पेक्ट, नॉट बाय सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलकर, अंदर से वो भर जाएगा ना, वो स्टिम्युलेंट तो ऐसे छूट जाएगा. और अगर वो भरेगा नहीं, आप रोज लड़ते रहो उस बात के लिए कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो.
0: उससे भी पहले अपने आप को तो भरें, यू नो, क्योंकि हमने इतना दर्द क्रिएट किया है इस पूरे थॉट से कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ये कर रही है, या मेरा हस्बैंड ये कर रहा है. एंड सो वी जस्ट गो इनटू सो मच ऑफ अ डीप. यस,
1: सो वन नाउ अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जजमेंट, अगर कोई मेरे आसपास ऐसा कुछ कर रहा है,
0: तो आई एम नॉट बैड,
1: नॉट टू बी जजमेंटल अबाउट इट. आप जजमेंटल नहीं होते ना जैसे, तो सामने वाले को आपसे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है. और जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं, भले आप बोलेंगे कुछ नहीं, आप ऊपर से बात अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी
0: उन्हें पता होता है, यू नो, सो मेनी टाइम्स दे से दैट आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग.
1: एग्जैक्टली, सो दैट एनर्जी रीचेस. तो एक दिन के लिए ये ट्राई करना कि औरों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना, फिर अपने थॉट्स को देखना शुरू करना, अपनी फीलिंग्स को, धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि ये जो थॉट्स भी हो रहे हैं ना, ये क्रिएट किए जा रहे हैं. आई एम क्रिएटिंग दीज थॉट्स, आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस थॉट्स, आई एम नॉट इवन द थॉट, आई एम नॉट दिस रोल, आई एम नॉट दिस, यू नो, द बॉडी, बट आई एम नॉट इवन द थॉट, दैट ऑल्सो आई एम क्रिएटिंग, आई क्रिएट दैट थॉट. जैसे ही आप उस लेवल पर आते हैं कि आई क्रिएट दिस थॉट, आई क्रिएट दिस फीलिंग, आप थॉट से भी डिटैच हो सकते हैं. आप क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला
0: ये थॉट मैंने क्रिएट कर दिया,
1: तो मतलब मैं कोई और हूँ ना. जैसे मैंने कहा ये मैंने क्रिएट किया, तो मैं कोई और हूँ. एंड ये स्थिति में जब आप पहुंचते, तो दिस इज स्टिलनेस, जो हम कई बार बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस वॉट इज दैट स्टिलनेस, वॉट इज साइलेंस. तो साइलेंस है एक तो यहाँ से साइलेंस, और एक है यहाँ साइलेंस. तो यहाँ साइलेंस मतलब ये नहीं कि हम सोचना बंद कर देंगे. कई बार भाई बहने मेडिटेशन मीन्स ट्राई करते हैं हम थॉट्स ही नहीं क्रिएट करें, नॉट रियली पॉसिबल. लेकिन सिर्फ साक्षी होकर देखें कि ये भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ. जैसे ही वो देखेंगे ना, उसकी स्पीड भी स्लो डाउन हो जाएगी, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी. एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट इनर स्टेबिलिटी, दैट साइलेंस, दैट पीस. ये एक्सपीरियंस करना है. क्या होता है, नॉर्मल में, नॉर्मल एक्टिविटी में वी आर क्रिएटिंग अबाउट 25 टू 30 थॉट्स पर मिनट. दिस इज मेडिकली बीन कैलकुलेटेड. ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो मशीन होती है, उस पर ये वेव्स आते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन बिहाइंड दैट. द 25 टू 30 थॉट्स
0: पर मिनट,
1: पर मिनट नॉर्मल स्टेट में. इसको हम कहते हैं बीटा स्टेज ऑफ द माइंड, के नॉर्मल स्टेट ऑफ द माइंड में. और अगर हम माइंड के वेरियस स्टेजेस को देखें सारा दिन, तो अप्रोक्सीमेटली इट विल कम टू सारा दिन में 40,000, 40,000 to 50,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं. दिस इज माई प्रोडक्शन. ये जैसे एक कंपनी है और उसकी ये प्रोडक्शन है, 40,000 थॉट्स अ डे. क्वालिटी,
0: It's all waste, actually. maximum times, you know.
1: तो उसमें कई thoughts बहुत powerful, positive होते, कई negative होते हैं, गुस्सा, resentment, चिंता, कई necessary होते हैं कि ये करना है, आज ये जान, और बहुत सारे waste होते हैं. Waste मतलब बहुत ज़्यादा जो बीत गया, या बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना जो अभी हुआ ही नहीं, तो उसमें कोई पावर नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, नीदर द पास्ट नॉर द फ्यूचर. तो इतनी सारी हमारी थॉट्स की स्पीड है. आर वी एवर अवेयर कि हम एक मिनट में 25 to 30 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं? तो इसलिए बहुत फास्ट है. तो जब हम मेडिटेशन में बैठते, तो ये धीरे धीरे स्लो होता. मेडिटेशन भी नहीं, अगर आप सिर्फ इसको वॉच करना शुरू कर दो, ये स्लो डाउन हो जाएगा. यू विल गेट टू सी द स्पीड. और तब अगर इसको हम थोड़ा सा भी स्लो करते, तो हमें लगता है ये तो हमने सोचना ही बंद कर दिया. तो सोचना बंद नहीं किया, लेकिन सोचने की स्पीड को बहुत स्लो कर दिया है. तो हैप्पीनेस मीन्स व्हेन माय थॉट्स डोंट गो like this, but they are absolutely stable. Ek contentment, ek inner peace. Hum bahut sare words use karte hain ki santushtata kya hai, satisfaction kya hai, peace kya hai. It's all this feeling where you are inside actually just comfortable. Jabhi bhi aise aise kuch bhi hota hai, wo comfortable nahi hota. Lekin aap bilkul stable hai, contented hai. This is happiness. Happiness is not excitement. Excitement is different. Humne ice cream khaya aaj. Kehte I'm very happy after. That's not happiness. Wo to ek sensation hai. Ek sensation thi taste bud ke dwara mujhe mili. And that is, you know, giving me that sensation. I say this is happiness. Suppose, let's say ki mere daant mein bahut dard ho raha hai. Lekin aaj kuch hua, na wo theek ho gaya. Say, I'm very happy. You know, my this is not happiness. Wo dard tha, I have got relieved from my pain. So it's a relief. Then I'm very excited about something that has happened. Lekin hum in sari cheezon ko naam kya de dete hain? Happiness. Aur is process mein happiness actually kya hai? Wo bhool jati hai.
0: To wo jo sari cheeze agar hame nahi mil rahi hain, to hum say, we say that we are not getting happy.
1: Yeah, that's why. And then we start looking for it outside. To happiness chahiye nahi actually. Kuch bhi nahi karna hai khush rehne ke liye. Khush hum already hain. See, it's a different thing. Ek hai ki yahan, you know, it's like a glass. I am going through life today with the focus ki ye jo mera glass hai na, ye khali hai, please isko bharo. Kuch na kuch aisa hota jaye jisse ye bharta jaye. Just change the focus one day ki ye glass already bhara hua hai. Ab sirf sara din kya karna?
0: Isko bahar nahi jaane dena.
1: Sambhal ke chalna hai ki har choti choti baat mein ye spill off nahi kar jaye. Kyunki ye itna jaldi spill off karte jaate hain sara din mein, fir at the end of the day we find ourselves very empty, very depleted.
0: But this becomes very boring.
1: Again, agar aapne excitement ko apni happiness ke saath relate kar diya.
0: To jab nahi hogi to aap.
1: Aur excitement bhi bahut healthy nahi hai actually mind ke liye. And jaise fear hai, to wo low state hai. Excitement uska other opposite hai. To ye dono cheeze stability nahi hai. Aur fir hum dono ke
0: saath. Actually, hum dono mein we say that it's a, from the bottom of my heart, you
1: yes.
0: know.
1: It gives a very, yes.
0: A pit of my stomach. Aise yes. kuch feel hota hai. Chahe dar lag raha hai,
1: absolutely.
0: Chahe bahut khushi ho rahi ho.
1: And dono cheezo mein, aapko apni physiology par impact dikhai dega.
0: Haan, shareer par,
1: yahan
0: yes.
1: normal nahi rehta hai. Aapki heart, excitement mein aapki heartbeat normal
0: yes.
1: hai.
0: Nahi.
1: Dar mein bhi aapki heartbeat normal, aapki pulse rate normal. Anything that's not normal. Now we know. This is what is abnormal. But we thought ye normal hai. See, man par to shayad hume abhi nahi pata chale ki kitna impact pad raha. Physiology par to dikhai de raha na. Turant you will find your heart beating so fast. How's that normal? The happiness is that stability. To ab kya hoga? Situation specific nahi hai. Ab chahe kuch bhi ho jaye sara din mere aaspas, mujhe sirf ye dhyan rakhna hai ki mujhe apni ye stability ko नहीं खोना है. इट डजेंट मीन मैं कुछ नहीं करूं, मैं कुछ नहीं कहूं किसी को. बच्चे ने कुछ गलत किया, मैं कहूं या नहीं कहूं? कहें, लेकिन दो चॉइसेस हैं. या तो गुस्सा होकर कहें, डिस्टर्ब होकर कहें, या फिर स्टेबल रहकर करें. वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? वी थॉट रिएक्ट करना, गुस्से से बोलना, डिस्टर्ब होना, दिस इज द ओनली वे टू डिसिप्लिन समबडी. सुनो, सो व्हाट वी कुड ट्राई वन डे इज डू एवरीथिंग. आपको काम करवाना है लोगों से, आप काम करवाओ, डिस्टर्ब हुए बना. और इसको सिर्फ एक दिन का एक्सपेरिमेंट करना है. वी ऑलवेज ट्राई दिस एज अ 24-hour एक्सपेरिमेंट. 24 घंटे इसको ट्राई करना है कि आज एक दिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरे आसपास, एंड कुछ भी देन मीन्स कुछ भी, कुछ भी, जस्ट वन डे आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड. जस्ट वन डे आई विल डू एवरीथिंग जस्ट विद दिस रिमेम्बरेंस, आज एक दिन स्टेबल. और यू विल रियलाइज ये बहुत बहुत ईजी है. इट्स सिर्फ किया नहीं था अभी तक. ट्रैफिक में अटके, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं. किसी ने रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर लिया, कैसे चलाते हैं, पता नहीं इनको लाइसेंस कौन दे देता है, ऐसे ही है ये तो. ये है सारी, सारा दिन. सिर्फ एक दिन वो नहीं करना है. सब कुछ करना है, सिर्फ एक दिन डिस्टर्ब नहीं होना, स्टेबल रहना. एंड यू विल रियलाइज इसके लिए कोई विधि, कोई तरीका सीखना नहीं है कहीं से. इसको सिर्फ याद रखना है कि मुझे एक दिन स्टेबल रहना. एंड यू सी हाउ मच एनर्जी यू विल सेव. डेफिनेटली.
0: सो ये जो स्टेबिलिटी है, ये हमें कितनी स्ट्रेंथ देती है और कितना हमें एनर्जी देती है, एक्चुअली कितना कुछ और करने के लिए करती है. तो ये हम अपने साथ करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए रहेगा. और आपसे हर बार कहेंगे कि कुछ भी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कुछ भी आप समझ पा रहे हैं, उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं खुला निमंत्रण हर बार की तरह। तो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। जैसे शिवानी, जो जो आज हमने समझा है उसे हमने किया तो है, ट्राई किया है उसे समझे, लेकिन एक और बात समझ में आई हुई है कि साइलेंस में जैसे बैठते हैं वो डीप हमारे सबकॉन्शियस में जब बैठने लगता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ मिनट अगर हम रिफ्लेक्ट करें,
1: कंफर्टेबल होकर बैठे और अपने थॉट्स को consciously create karne ka prayas kare. Let me look at myself, the creator, the master, the powerful being. I, the creator of every thought, has a choice. Mere aas paas chahe kuch bhi ho jaye, I choose stability. Chahe koi kuch bhi kahe, I choose stability. और जैसे ही I remain stable, situation परिवर्तन हो जाती है। एक क्षण के लिए अपने आप को उस व्यक्ति के सामने देखें जो आज दिन तक हम समझते थे कि ये मुझे गुस्सा दिलाता, ये मुझे डिस्टर्ब करते। अपने आप को उनके सामने देखिए, वो वैसे ही है, वैसे ही बोल रहे हैं, वैसा ही व्यवहार, लेकिन अपने आप को देखें, आई एम स्टेबल। उनके बोल, उनके व्यवहार मेरे मन पर प्रभाव नहीं डाल सकते। आई चूज माई रिस्पॉन्स बिकॉज आई एम द पावरफुल बींग। ओम शांति,
0: ओम शांति। अगर इन रिफ्लेक्शंस को देखें तो कहीं ना कहीं वो शक्ति जो बाहर से तलाश रहे थे, इन सॉफ्ट इमोशंस, जिन्हें हम सॉफ्ट इमोशंस कहते थे, चाहे वो हैप्पीनेस था, पीस था, लव था, वो मुझे कितना शक्तिशाली बनाता है। तो आज खुशी की और शांति की, स्टेबिलिटी की इस शक्ति को अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करें। आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: भूदान की तरह साल की अखंड पदयात्रा में विनोबा ने सर्दी, गर्मी और बारिश की सतत मार सहन की है। कुदरत की क्या करामात थी कि जहां सबसे अधिक गर्मी, वहीं गर्मी के दिनों में उनकी पदयात्रा चलती थी। जहां सबसे अधिक ठंड, वहीं ठंड के दिनों में घूमने का कार्यक्रम बनता था। यही हाल बारिश का। बारिश के ही दिनों में उनकी असम यात्रा और केरल यात्रा चली। लोग कहते, बाबा अब तो बैठिए, कब तक घूमते रहेंगे, इतना कष्ट इस जर्जर शरीर को क्यों दे रहे हैं, थोड़ा उसकी तरफ भी तो देखिए।
1: तुम लोग कुछ नहीं जानते, इस यात्रा में इस देह को थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, परंतु बापू सतत मेरे आगे पीछे रहते हैं और मुझे संभालते हैं, इसीलिए तो मुझे ना कोई तकलीफ है ना कोई चिंता।
0: भूदान पदयात्रा में एक डच सज्जन विनोबा जी से मिलने आए। पहले ही मुलाकात में उन्होंने कहा, विनोबा जी आपके भारत में मैं आया था गांधी जी को देखने। मैं दिल्ली गया, बंबई गया और भी कई जगह भटका, परंतु गांधी कहीं नहीं दिखाई दिए। इज ही रियली डेड? क्या वे सचमुच मर गए?
1: नो सर, ही स्टिल लिव्स। सर्वोदय के काम में लगे हुए 4-5 हजार सेवक जो गांव-गांव भटककर तपस्या कर रहे हैं, उनके दिल में गांधी जिंदा बैठा है, उन्हें गांधी जी ही घुमा रहे हैं और मुझे भी।
0: ऐसे ही एक दफा किसी ढलती हुई शाम को बाबा अपने 4-5 साथियों के बीच बैठे हुए थे। लालटेन का हल्का प्रकाश बाबा के मुंह पर पड़ रहा था। बापू के बारे में बातें चल रही थी। बाबा भूतकाल में खोते जा रहे थे, एक के बाद एक प्रसंग कहते जा रहे थे। आखिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और धीरे से गदगद आवाज सुनाई दी,
1: वे हुक्म दें और मैं उनके हुक्म को उठा लूं, यही आज तक का मेरा जीवन रहा है।
0: पौनार का पवित्र परमधाम आश्रम, सुबह का शांत शीतल समय। ब्रह्म विद्या मंदिर के सभी सदस्य अपने अपने दैनिक कार्यक्रम में व्यस्त थे। नहा धोकर जब मीराबेन बाबा की छोटी सी कुटिया में जाकर देखती है तो कुछ नई प्रवृत्ति में बाबा अकेले व्यस्त थे। बिछावन अस्त व्यस्त पड़ा था और नीचे बैठक जमाने का प्रयास चल रहा था। पूछा, क्या करना है?
1: नीचे सिर्फ दरी और तकिया ही रखनी है, बाकी सब निकाल दो।
0: मीराबेन ने कहा, बाबा पहले पाट पर की गद्दी निकाल दी, फिर पाट ही निकाल दिया, अब नीचे सिर्फ दरी रखने के लिए कह रहे हैं, क्या बात है?
1: देखो, एक तो हमारी ये छोटी सी कुटिया, उसमें पाट हो तो फिर आने वाले को बैठने में मुश्किल होती है, सब नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठूं, यह भी ठीक नहीं। इस दृष्टि से मैंने पाट निकलवा दिया और नीचे बिछाने का शुरू किया, परंतु नीचे की बैठक में मेरी इस मोहिनी पर सबका पांव पड़ता है, यह ठीक नहीं। इसलिए आज से तय किया है कि दिन में दरी पर नीचे ही बैठना और लेटना, रात को पाट पर सोऊंगा और मोहिनी मेरे नीचे नहीं रहेगी परंतु मेरे सिरहाने रहेगी।
0: और विनोबा ने बिस्तर में से एक ब्राउन रंग का कंबल हाथ में लेकर मीराबेन को बुलाया। कोने में बापू का नाम लिखा हुआ था। उनका पारायण बाबा की मुंह से अनेक बार सुनने को मिलता था, आज फिर से सुनने को मिला।
1: तुम जानती हो इस मोहिनी की कहानी? सन 1950 में मेरा दिल्ली जाना हुआ, तब बापू का यह कंबल मुझे बख्शीश में दिया गया, तब से वह मेरे पास ही है। बापू की यह स्मृति है इसलिए उसका नाम मैंने मोहिनी रखा है। रोज नीचे बिछाकर इतने साल सोया हूं, मेरे पास सुरक्षित रहा है। गांधी स्मारक वाले जानेंगे तो मैं मानता हूं कि मुझसे मांगेंगे नहीं, क्योंकि मैं उसे संभालता हूं।
0: वैराग्य के प्रखर वैनाश्वर में जिनके मोह, ममत्व और आसक्ति का कण कण सुलग कर भस्म हो चुका है, निरासक्त सन्यासी का उत्तम नमूना जिसने अपने जीवन के द्वारा दुनिया के समक्ष खड़ा किया है। उस बैरागी को मोहिनी की मोहिनी से मोहित देखा तो मेरा सिर उनके इस अलौकिक प्रेम के आगे झुक गया। मोहन उनके शरीर के रोम रोम में व्याप्त हो गया है। इसकी प्रतीति हुई। मोहन की मीठी याद दिलाने वाली उस मोहिनी सेज पर सोने के लिए रोज रात को जय जगत करके ये शुभ्र वस्त्रधारी मूर्ति जब मच्छरदानी में अदृश्य होती है तब बहुत बार लगता है कि बाबा बापू में समा गए। बापू के शिक्षण का निचोड़ विनोबा ने इस प्रकार रखा है।
1: सत्यम जीवन का लक्ष्य, संयम जीवन की पद्धति, सेवा जीवन का कार्य, यह सब आचरण में उतरे, यही भगवान से निरंतर प्रार्थना है।

0: भगवान कृष्ण 12 साल की शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से घर जाने वाले हैं। विदा लेते समय गुरु संदीपन के पास आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि जब तक जीऊं मातृ हस्तेन भोजनम मिले। विनोबा जी भी कहते हैं कि
1: जिन श्रीमंत बच्चों को जन्म लेने पर माँ के बदले आया का दूध मिलता है वह गर्भ श्रीमंत नहीं, वह गर्भ दरिद्र है। माँ का दूध ना मिले, माँ के हाथ का भोजन ना मिले, उसके जैसा दूसरा दुर्दैव क्या। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन सबको मैंने अपने हाथों से भोजन पकाकर खिलाया है। जेल में भी जेल को आश्रम बनाते वक्त मैंने रसोई का काम उठा लिया था। मेरे हाथ की रसोई यानी बिना मिर्च मसाले की। पहले तो राजनीतिक कैदियों में से 10-15 लोग ही बिना मिर्च मसाले की रसोई खाते थे क्योंकि सबको तीखा पसंद था। परंतु जब मैंने रसोई बनाना शुरू किया तो सब राजनीतिक कैदी सादी रसोई ही ज़्यादा पसंद करने लगे। धीरे धीरे दूसरे कैदी भी उसमें शामिल होने लगे। फिर तो संख्या इतनी बढ़ गई कि जेलर को प्रार्थना करनी पड़ी कि कृपया आप दूसरे कैदियों के भोजन की जिम्मेदारी मत उठाइए।
0: रसोई को विनोबा फाइन आर्ट कहते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि रसोई सुखादु बननी चाहिए और खाना चाहिए अस्वाद की भावना से। रसोई का स्वाद सिर्फ मिर्च मसाले से नहीं आता है, उनमें जब भाव उड़ेला जाता है तब मनपसंद भोजन बनता है। माँ के हाथ से जब रसोई बनती है तब रसोई की प्रत्येक प्रक्रिया में माँ के हृदय का भाव उड़ेला जाता है। उसका वो कर्म उपासना रूप होता है। जेल में सब राजनीतिक कैदी अपने पढ़ने के लिए अपनी रुचि की किताबें मंगवाते रहते थे। जेल का एक सरकारी अफसर उन पुस्तकों को देखकर आपत्तिजनक पुस्तकों पर रोक लगाता था और देने जैसी पुस्तकों की इजाजत देता था। दूसरे सब कैदियों की रोज बर रोज कुछ न कुछ शिकायत सुनाई देती थी कि आज फलानी किताब को रोका गया क्योंकि सरकार की दृष्टि से वो खतरनाक थी। विनोबा की किताबों पर कभी कोई रोक नहीं लगती थी क्योंकि उनकी फेहरिस्त में गीता, उपनिषद, पुराण जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ रहते थे। एक दिन किसी ने कहा, हम सहस्त्र किताबें मंगाएंगे तो उनमें से हमें एक दो मिलेंगी और विनोबा की सभी किताबें मंजूर होकर आएंगी। तब विनोबा ने कहा,
1: यह सरकार मूर्ख है, खतरनाक क्या है, उसकी उसे कोई पहचान ही नहीं है। अकल होती तो उपनिषद गीता को सरकार जरूर रोकती और दूसरी किताबें जिनसे वह भड़की हुई रहती है उन्हें आने देती। गीता का आधार नहीं होता तो अंग्रेज सरकार के लिए महाखतरनाक गांधी गांधी ना बनते, तिलक तिलक ना बनते, श्री अरविंद अरविंद ना बनते। जिन ग्रंथों में जीवन का अधिष्ठान है वे ही ग्रंथ जुल्मी सत्ता में बारूद लगा सकते हैं।
0: स्वराज आंदोलन के सैनिकों की सजा थी जेल यात्रा। 1943 में एक बार सिवनी जेल से कैदियों को दक्षिण में वेलूर जेल ले जाया गया। दूसरे कैदियों के साथ विनोबा भी सवेरे वेलूर जेल में पहुंचे। जेलर हाजिर था। सब कैदी राजनीतिक थे इसलिए हर एक को अपनी अपनी आवश्यकता बताने के लिए जेलर ने कहा। प्रत्येक ने अपनी अपनी आवश्यकताएं बताई। जब विनोबा की बारी आई तब उन्होंने कहा,
1: मुझे दो चीजों की जरूरत है। ये जरूरतें पहले पूरी होनी चाहिए। एक तो मेरे सिर के बाल बहुत बढ़ गए हैं इसलिए नाई चाहिए, और दूसरे मैं तमिल सीखना चाहता हूँ इसलिए मुझे कोई तमिल शिक्षक चाहिए।
0: विनोबा ने पहले ही दिन से तमिल भाषा सीखना आरंभ कर दिया। बेचारे तमिल शिक्षक को लगता था कि ये मनुष्य तमिल क्यों सीखता है, क्या मद्रास में व्यापार करना चाहता है। वे जेल में 4 महीने रहे परंतु दूसरे कैदियों की मदद से दक्षिण की चारों भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम उन्होंने सीख ली। वे मानते हैं कि जिस प्रांत का अन्न खाते हैं उस प्रांत की भाषा न सीखे तो वो प्रांत द्रोह माना जाएगा। दूसरा, राष्ट्र की भावनात्मक एकता सिद्ध करने के लिए प्रत्येक अदक्षिणी को दक्षिण की कोई न कोई भाषा सीखनी ही चाहिए। जेल के प्रांगण में एक जगह घास को कतर कर 1945 लिखा था। हर साल ये डिजाइन बदल दी जाती थी, पुरानी घास निकाल डालते थे, चालू वर्ष के अंक बना दिए जाते थे। उसका दृष्टांत देकर विनोबा अपने साथियों को समझाते थे।
1: घास के प्रत्येक तिनके का अपना अपना स्वतंत्र प्रयोजन है, परंतु उन सब तिनकों का मिलाजुला एक सामूहिक प्रयोजन भी है, और वह है 1945 बनाना। यह बात ये तिनके नहीं जानते, वे तो उगते हैं और मिटते हैं, परंतु सब मिलकर एक प्रयोजन सिद्ध होता है। हम सब भी तिनके जैसे ही हैं, हम अपना प्रयोजन देखते हैं, परंतु इस सृष्टि में अपना क्या प्रयोजन है वह हम नहीं जानते, परंतु कोई ऐसा प्रयोजन जरूर है जिसके लिए सृष्टिकर्ता ने हमें पैदा किया।
0: वेलूर जेल में विनोबा और उनके साथी जब पहुंचे, उसके पहले कोंडी वेंकट्टा नाम के भाई वहां पहुंच गए थे और उन्होंने कैदियों में प्रार्थना शुरू करवा दी थी। प्रार्थना में गीता के 11वें अध्याय से कुछ श्लोकों का पाठ कराया जाता था और फिर रामधुन आदि बापू की प्रार्थना करवाते थे। क्रम में कुछ फर्क था। जेल में बापू के कुछ अनुयायी गए, उनको ऐसी प्रार्थना पसंद नहीं आती। वे विनोबा से कहते रहते कि आपको जोर देकर कहना चाहिए कि बापू ने जो क्रम रखा है वही क्रम रखना चाहिए, क्रम भंग होना अच्छा नहीं है, ये बात आपको उन्हें समझानी चाहिए।
1: भाई, मुझसे ये काम नहीं बनेगा। भारत में हिंदुओं में एक ही प्रार्थना चले, यह असंभव है। जिसके हृदय को जो स्पर्श करे वही प्रार्थना हो सकती है। हिंदू धर्म की यही विशेषता है कि उसमें हजारों संप्रदाय रह सकते हैं। तिलक ने हिंदू की व्याख्या की, उपास्यानाम अनियमः, साधनानाम अनेकता। जिस धर्म में साधना की अनेकता हो, मतलब किसी एक ही निश्चित साधना का आग्रह ना रखा जाए, वही तो हिंदू धर्म है।
0: गोपाल राव काले विनोबा के बचपन के सहपाठी रहे हैं। जेल में रहते समय एक बार उनकी पत्नी विनोबा से मिलने आई। विनोबा की तबीयत के समाचार पूछकर उन्होंने विनोबा से पूछा, क्यों, जेल में कैसा लग रहा है? विनोबा ने लाक्षणिकता में जवाब दिया,
1: आपने सर्कस देखा है ना? सर्कस में मनुष्य पशु पर जुल्म ढाते हैं, जेल में इससे उल्टा होता है। यहां पशु मनुष्य पर जुल्म ढाता है। जेल जीवन का विधायक दर्शन देखिए। सच्चा आश्रमी जीवन तो जेल में भी अनुभव किया जा सकता है। गिनती के कपड़े, पानी का मग और कांजी की कटोरी, इतने से बर्तन, इससे अधिक असंग्रह के व्रत का पालन कहाँ होगा? नियम से नहाना, खाना, काम करना और घंटी बजते ही सो जाना और उठना, क्रमबद्ध जीवन, बीमार पड़ने की छुट्टी नहीं, भोजन में रोज ही अस्वाद व्रत, इससे अधिक संयम व्रत हम अपने आश्रम में भी कहाँ पालते हैं? अपने आश्रमों में जेल की अच्छी चीजें अपनाकर सुधार करना होगा।
0: सिवनी जेल में राजनीतिक कैदी अपने रिश्तेदारों को पत्र लिख सकते थे, परंतु विनोबा को ये भेद मंजूर नहीं था, इसीलिए वे किसी को भी पत्र नहीं लिखते थे। 3 साल में उन्होंने किसी को पत्र नहीं लिखा था। एक दिन न जाने जेलर का क्या हुआ कि वो विनोबा के पास आकर बैठ गया और पूछने लगा,
2: आपके जीवन में दुख जैसी कोई चीज नहीं है?
1: हाँ है, परंतु वह दुख कौन सा है यह आप ही ढूंढिए। मैं आपको 7 दिन का समय देता हूं।

0: विनोबा जी, पिछले एक सप्ताह में मुझे कुछ मिल नहीं रहा, कृपया आप ही बताइए आपको कौन सा दुख है।
1: इस जेल में सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शन नहीं होता, यह मेरा सबसे बड़ा दुख है।

0: लोग पूछते कि विनोबा जी, आपको 1200 कैलोरी भोजन कैसे पर्याप्त मालूम होता है? तो हंसते हंसते विनोबा जी जवाब देते,
1: अरे भाई, मेरी खुराक कितनी है यह आप कैसे जानेंगे? इन 1000 कैलोरी के अलावा मैं गीता के 18 अध्याय खाता हूँ और उससे भी अधिक चारों ओर फैला हुआ विशाल आकाश खाता हूँ। अब आपको कुछ कहना है?

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं विश्व साहित्य में महात्मा गांधी की उपस्थिति की।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: ये
2: महात्मा गांधी अपने समय के अत्यधिक चर्चित व्यक्ति थे। उनका कहा और किया उनके समय में ही पूरी दुनिया तक पहुंच रहा था और विश्व समुदाय उस पर विमर्श कर रहा था। लेकिन ये तथ्य भी अद्भुत है कि उनके जीते जी उन पर जितना कुछ कहा और लिखा गया उससे कहीं अधिक उनके जाने के बाद उन पर चर्चा परिचर्चा हुई। लोगों ने अलग अलग माध्यमों से गांधी दर्शन को छूने की कोशिश की। तब से लेकर अब तक विश्व के सभी देशों के बड़े रचनाकार गांधी जी को अपनी रचनाओं में पिरो चुके हैं। महात्मा गांधी सन 1948 में शरीर तो छोड़ गए पर जीवित वे आज भी हैं। वतन का राग कार्यक्रम में आज आपके लिए हैं कुछ ऐसी ही कृतियों के अंश जिनमें जिंदा हैं गांधी। द्वितीय गोल में सम्मेलन के बाद गांधी जी नोबेल पुरस्कार विजेता रोमिया रोला के अतिथि हुए। अपनी पुस्तक महात्मा गांधी द मैन हु बिकम वन विथ यूनिवर्सल बीइंग में उन्होंने लिखा है, महात्मा गांधी के अहिंसक संघर्ष को मैं अत्यंत उत्सुकता से दूर से ही देखता सुनता रहा। उनसे भेंट हुई तो लगा जो बहुत दूर से देख सुन रहा था उसे न केवल एकदम करीब से देख रहा हूं बल्कि उसे अपने भीतर धड़कता हुआ महसूस कर रहा हूं। गांधी मूर्तिमान सार्वभौम प्रेम है। अपने विरोधियों के प्रति इतनी ममता, इतनी सहानुभूति मानव मात्र में संभव है, मैंने इससे पहले इसकी कल्पना कभी नहीं की थी। प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी आश्चर्य करेगी। वो विस्मयपूर्वक पूछेगी कि क्या ऐसा कोई हाड़ मांस का बना व्यक्ति सचमुच किसी युग में इस धरती पर चलता फिरता भी था। वो मुश्किल से ये विश्वास करेगी कि आदमी के ऐसे शरीर में देवता, संत अथवा देवदूत का होना कभी संभव हुआ है। हम जानते ही हैं, अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों के लिए संघर्ष के प्रतीक थे मार्टिन लूथर किंग। उन्होंने अपनी पुस्तक स्ट्राइड्स टुवर्ड्स फ्रीडम में लिखा है, मैं कई महीनों से सामाजिक सुधार की जिस पद्धति की तलाश में था वो मुझे प्रेम और अहिंसा पर गांधीवादी बलाघात से मिली। मुझे लगा कि मुक्ति संघर्ष के लिए वही तरीका नैतिक और व्यावहारिक दृष्टि से ठीक है। मार्टिन लूथर किंग स्वयं को गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहते थे। कैसा संयोग था ये भी कि उत्तराधिकार में उन्होंने महात्मा गांधी जैसी ही मृत्यु भी पाई। गांधी जी को स्मरण करते हुए अपनी कविता में वो कहते हैं, मुझे नहीं मालूम किस धातु का बना था वो, उसकी आंखों में गंगा जल ही नहीं, टेम्स, मिसिसिपी, वोल्गा और वांगो सभी तो लहराती थीं। उसमें हिमालय ही नहीं, आल्प्स की ऊंचाई भी समाहित थी। उसमें हिंद महासागर ही नहीं, काला सागर, प्रशांत महासागर सभी अपनी गहनता लिए बैठे हुए थे।

लेस्टर की एक पुस्तक है गांधी द वर्ल्ड सिटीजन। इस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी से अपने संवादों को लिपिबद्ध किया है। वो लिखती हैं, बापू ने मुझसे पूछा, तुमने तो विश्व भ्रमण किया है, बच्चों के लालन पालन की दृष्टि से तुम्हें कौन सा देश, कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक पसंद आई? मैंने उनकी आंखों में सहज अदम्य जिज्ञासा की चमक देखी। मैंने कहा, बापू, बच्चों के लालन पालन की दृष्टि से रूस देश स्वर्ग है। वो बच्चों का स्वर्ग है। वहां की व्यवस्था अपने बच्चों को एक मूल्यवान धरोहर की तरह सहेजती, संजोती और संवारती है। मैंने देखा गांधी जी की आंखों में एक ललक कौंध गई। उन्होंने कहा, बच्चों के उस स्वर्ग को मैं देखना चाहूंगा। उस समय मुझे लगा मैडोना की बाहों का विश्व शिशु मेरे सामने पुलक भरी किलकारी भर रहा है। उस प्रौढ़ शरीर में एक नन्हा फरिश्ता उतर आया था। सुप्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर जब भारत आए तो वो गांधी जी के साथ उनके आश्रम में 7 दिन तक रहे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, 7 डेज विद महात्मा गांधी। इस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी से संबंधित अनेक रोचक प्रसंग दिए हैं। वो लिखते हैं, गांधी जी से हाथ मिलाते ही मेरे भीतर की अहंकार ग्रंथि जैसे पिघलने लगी। उन्होंने मुझे बात करने के लिए 1 घंटे का समय दिया था। बात दिन में ठीक 3:30 बजे शुरू हुई और 4:30 बजे, जबकि मेरा वाक्य अधूरा ही था, उन्होंने मुझसे कहा, बस समय हो गया, अब बात बंद। मैंने संसार के अनेक महान और व्यस्ततम लोगों से चर्चा की है, पर यह पहला व्यक्ति है जिसने मुझे इस तरह से टोक दिया कि मैं अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया। समय का इतना पाबंद, इतनी कठोरता से इसका पालन मेरे लिए एक अपूर्व अनुभव था। लुई फिशर आगे लिखते हैं कि अगले दिन आश्रम वासियों और गांधी जी के साथ भोजन के लिए मुझे पंक्ति में बैठाया गया। 1 वर्ग फीट का आसन था, उस पर मैं बैठा था। इस तरह पालथी मारकर बैठने का मेरा अभ्यास नहीं था। मेरे घुटने दुखने लगे। थाली में रोटी, साग और कुछ आम परोसे गए। मैंने जैसे ही खाना शुरू करना चाहा, गांधी जी ने मुझे रोक दिया। पहले प्रार्थना होगी, भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद खाना शुरू होगा। प्रार्थना हुई, भगवान को भोग लगा, फिर भोजन प्रारंभ हुआ। लुई फिशर लिखते हैं, मैंने उतावलेपन के साथ आम में दांत लगाया, उसका रस मेरे कपड़ों पर छितर गया, मैं झेप गया। आम खाने का वो मेरा पहला अवसर था। गांधी जी ने मेरी ओर देखा, वो अत्यंत वात्सल्य भाव से हंसे और फिर उन्होंने मुझे आम को पिलपिला करके चूसने का तरीका बतलाया। मैं देख रहा था कि संसार की गूढ़तम समस्याओं पर चर्चा करते हुए, महानतम सिद्धांतों, आदर्शों और उसकी व्यावहारिकता पर चर्चा करते हुए भी उनका ध्यान किस तरह रोजमर्रा की उन छोटी छोटी बातों पर भी रहता था जिनकी हम अक्सर उपेक्षा कर जाते हैं।

मैक्सिको के शिल्पकार कानेसी, जिन्होंने मैक्सिको के राष्ट्रपिता हिदाल्गो की प्रतिमा भी बनाई थी, जब वो महात्मा गांधी को प्रस्तर, कांसे और मिट्टी में उतारने में तन्मय थे, तब वो एक अलग अनुभव से गुजरे। प्रतिमा निर्माण के बाद अपने अनुभव को उन्होंने अभिव्यक्ति दी। उन्होंने लिखा, मैं सदा से महान आत्माओं का चरित्र पढ़ता रहा। जितना जो कुछ पढ़ा है, मुझे गांधी उन सब में आगे नजर आता है। इस मूर्ति का निर्माण मेरे लिए एक आध्यात्मिक अनुभव है। इसने मेरे भीतर का मौसम बदल दिया है। मेरे भीतर एक अपूर्व पतझड़ घटित हुआ और उसके बाद नई नई कोंपलें फूटी, फूल खिल उठे और मैं एकदम नया हो उठा हूं। सुप्रसिद्ध अमेरिकन समाजशास्त्री और दार्शनिक पेट्रिम ए सोरोकिन ने अपनी पुस्तक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी गांधी जी को समर्पित की थी और उन्हें डेथलेस यानी मृत्युहीन बतलाया था। डॉक्टर रूफस जोन्स ने गांधी जी से मिलने के बाद उनकी तुलना संत फ्रांसिस से की थी। वेंडेल विल्की ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड में महात्मा गांधी को याद करते हुए लिखा है, वो जो सबके लिए सब कुछ त्याग चुका है, वही सबका प्रतिनिधित्व कर सकता है। इस समय सारे संसार में ऐसा एक ही व्यक्ति है और वो है महात्मा गांधी। उसने संसार के शोषितों और अभावग्रस्त लोगों के साथ स्वयं को एकाकार कर दिया है। वो पूर्ण सद्भावना से जब शोषकों, अत्याचारियों और अन्यायियों से टकराता है, तब वे अपने को असहाय महसूस करते हैं। उनके भीतर का दानव निरुपाय हो जाता है। जनवरी 1927 में सतारा के कुछ विद्यार्थी गांधी जी के पास पहुंचे और उनसे कहा, आप हमारे सौभाग्य से इस समय सतारा में हैं। हम बच्चों ने श्री हनुमान प्रतिमा की स्थापना की है, उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पधारकर आप हमें आशीर्वाद देने की कृपा करें। गांधी जी जब उन बच्चों के बीच गए, तब उन्होंने कहा, मैं भी हनुमान की तरह राम भक्त हूं। मेरे भी रोम रोम में राम हैं। मुझ में हनुमान जैसा सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं अपना सीना चीर कर तुम्हें दिखा सकूं, मगर यदि कोई चाकू से मेरा सीना चीर दे तो तुम्हें यहां राम राम लिखा मिलेगा। यदि कभी मुझे गोली मार दी जाए तो मेरे भीतर से राम ही बाहर आएगा। और समय साक्षी है कि जब गांधी जी को गोली लगी, तब उनके अंतिम शब्द थे, हे राम।

इस दुखद घटना पर ब्राजील की एक कवियत्री सिसिलिया मेरलीज का अंतर्मन अत्यंत उद्वेलित हुआ और वो बरबस कह उठी, मायाविनियों के नीले मोहक स्वर पर फैलाकर उड़ जाने वाले वे घोड़े, अंतर्मन के वे सारे सुंदर स्वप्न सुमन जो सब के सब यहाँ पहुंचकर मुरझा गए हैं, त्यागती हूँ मैं उन सबको। कोने कोने से उड़ उड़कर पहुंच रही है ये खबर कि मारा गया वो दुआ देता लोगों को, कि मारा गया वो दुआ देता लोगों को।

0: आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संतोष कुमार वर्मा और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है बालकृष्ण जांभेकर। यूं तो कई श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है, लेकिन लकी ड्रॉ द्वारा चुने गए हमारे चार भाग्यशाली विजेता हैं
1: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, राहतगढ़ सागर से श्री सौरभ अग्रवाल, जबलपुर से सुश्री वृंदा हिंगीकार और पटना बिहार से श्री राकेश कुमार।
0: आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारा आज का सवाल है कि गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे। सवाल एक बार फिर सुन लें, गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें मैसेज के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: आपण ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश, आपली माणसं.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जब हम दुनिया में किसी से दोस्ती करते हैं तो हम उसकी बाहरी सूरत देखते हैं, उसका शरीर देखते हैं, उसकी संपत्ति या उसका नाम देखते हैं। हमारे लिए किसी अदृश्य या अमूर्त चीज से रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि केवल स्थूल चीजों को ही पकड़ना जानती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह जो हमारा हाड़ मांस का शरीर है वह बहुत भारी है, इसकी अपनी सीमाएं हैं। यह एक समय पर केवल एक ही जगह रह सकता है, लेकिन जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है वह तत्व कितना सूक्ष्म होगा, वह कितना स्वतंत्र और व्यापक होगा। कबीर साहब आज हमें अपने उसी परम सूक्ष्म और सर्वव्यापी दोस्त का पता बता रहे हैं, जो पानी, धुएं और हवा से भी ज़्यादा बारीक और गतिमान है। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम वैज्ञानिक और दार्शनिक सूत्र। पानी हेते पातला, धुआं हेते छीण। पानी हेते पातला, धुआं हेते छीण। पवन बेगी उतावला, सो दोस्त कबीर किन।

0: श्रोताओं, कबीर साहब परमात्मा के निराकार और सूक्ष्म स्वरूप की महिमा गाते हुए कहते हैं, पानी हेते पातला, मेरा वह जो अदृश्य मित्र हैं वह पानी यानी जल से भी ज़्यादा पातला यानी सूक्ष्म और तरल हैं। पानी तो फिर भी बर्तनों में समा जाता है, लेकिन वह तत्व इतना बारीक है कि उसे कोई बांध नहीं सकता। धुआं ही ते झीण, वह धुआं यानी धुएं से भी ज़्यादा झीण यानी झीना अत्यंत महीन और पारदर्शी है, जो हर कण के आर पार निकल जाता है। उसकी गति और सर्वव्यापकता को समझाते हुए कबीर अगली पंक्ति में कहते हैं, पवन बेगी उतावला, वह पवन यानी हवा के वेग से भी ज़्यादा उतावला यानी तीव्र गतिमान और तात्कालिक है। हवा को तो बहने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन उस परमात्मा का होश और उसकी उपस्थिति इतनी त्वरित है कि आप यहाँ याद करें और वहाँ वही हाजिर हो जाता है। सो दोस्त कबीर किन, कबीर कहते हैं कि मैंने किसी साधारण इंसान से नहीं बल्कि परम सूक्ष्म और सर्वव्यापी और चैतन्य तत्व से अपनी सच्ची दोस्ती कर ली है। यह दोहा उपनिषदों के अनोर्णीय महतो महियान, जो अणु से भी छोटा है और महान से भी महान है, के सिद्धांत की लोक भाषा में व्याख्या है। वेदांत दर्शन में ब्रह्मा को अतीन्द्रिय कहा गया है, यानी जिसे आँखों से देखा नहीं जा सकता, हाथों से छुआ नहीं जा सकता। कबीर यहाँ पानी, धुएं और पवन के प्रतीकों से चेतना की सूक्ष्मता को समझा रहे हैं। परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ राजा नहीं है, वह तो हवा से भी ज़्यादा करीब, धुएं से भी ज़्यादा सूक्ष्म और पानी से भी ज़्यादा निर्मल होकर हमारे ही भीतर धड़क रहा है। कबीर समझा रहे हैं कि ऐसे सूक्ष्म दोस्त मिलने के लिए हमारी बुद्धि और हमारे मन को भी उतना ही हल्का और सूक्ष्म होना पड़ेगा। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा विचार कीजिए कि हम विधाता को कहाँ ढूंढ रहे हैं। हम उसे पत्थरों में, गुफाओं में या आसमानों में खोजते हैं, जबकि वह तो हवा की तरह हमारे ही चारों तरफ और हमारी हर सांस में समाया हुआ है। वह हमसे एक पल के लिए दूर नहीं है। आज कोशिश कीजिए अपनी चेतना को थोड़ा सूक्ष्म बनाने की, इस संसार के भारीपन को, चिंताओं को और अहंकार के वजन को नीचे गिरा दीजिए। अपने मन को पानी की तरह निर्मल और पवन की तरह हल्का कीजिए, तो आपको महसूस होगा कि वह राम नाम रूपी सूक्ष्म दोस्त आपकी हर धड़कन में पहले से मौजूद हैं और आपको अपनी बाहों में थामे हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: श्रोत्यो, रेडियो मन भावन च्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 या क्रमांकावर।
2: बा तथागता यथार्थ का अन्वेषक, अस्तित्व का खोजकर्ता, विज्ञान की सकारात्मकता को गतिमान करने वाला, सत्य सत्य और मात्र सत्य अन्वेषक, क्रियान्वयनकर्ता, संपूर्ण सजीवों की उत्पत्ति चार घटकों, पृथ्वी आप तेज वायु से बनी है, इस वैज्ञानिक सत्य से ही सजीव के अस्तित्व का बोध चेतना से होता है और चेतना की ऊर्जा के कारण मनुष्य चित्त के घटक स्कंध होते हैं, संज्ञा, विज्ञान, संस्कार और वेदना। इनसे बनता है मन, अंतर्मन। अंतर्मन के साथ पंच स्कंध से बनता है सजीव शरीर। मोमबत्ती एक महत्व का प्रतीक है, ऊर्जा और चेतना समझाने का। प्रज्वलित मोमबत्ती से चेतना और ऊर्जा का संयोग स्वरूप दृश्यमान होता है। पृथ्वी, यह तत्व अत्यधिक महत्व का है। अवयवों का एक संघ रहना पृथ्वी घटक के कारण ही है, अन्यथा ऐसी स्थिति हो गई होती जैसे दो ठूंठ की होती है भेंट। कभी अवयव विघटित मिलन कुछ ऐसा ही हो गया होता बिना पृथ्वी घटक के। तेज या अग्नि, यह तो ऊर्जा प्रदान करता, चेतना का ऊर्जा वाहक। सजीव अवशेष का अस्तित्व तेज के कारण ही। ये हवा बहुत अनमोल, प्रतिक्षण एहसास दिलाती जीवन जीने की प्रक्रिया का। निरोगी तन मन पेशी के कारण अन्यथा सड़ गया होता शरीर कर्क रोग सम हवा के अभाव में। यह ज्ञान विज्ञान का नियम संपूर्ण सजीव के लिए लागू है। मनुष्य, पशु पक्षी और लताएं, वृक्ष, फूल, फल, फसल आदि सभी के लिए लागू। चेतना और ऊर्जा नियम अस्तित्व के लिए समुच्चय रूप से। विद्युत और चुंबकियों का अपरिहार्य संयोग। चेतना प्रविष्ट होती है शरीर में, होता है अस्तित्व चेतना का। सदा विश्व में चेतना का व्यापक रूप समाहित होता है शरीर में। संज्ञा, विज्ञान, संस्कार एवं संवेदना। मृत्यु समय चेतना का विज्ञान पटिसंधि हो जाती है। मूल विज्ञान चेतना से मृत्यु के समय 16 चित्त, 16वें चित्त की पटिसंधि। नवीन संस्करण के साथ पुनर्भवात। मनुष्य के प्रत्यक्ष जीवित होने की प्रतीति दृश्यमान होती है श्वास के कारण। प्रतिक्षण श्वासों का आना जाना शुरू रहता है। आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व का एहसास नहीं होता या नहीं दिखाई देता शरीर और मन के भीतर। आत्मा के संदर्भ में अनेक युक्तिवाद हुए हैं, कुछ शास्त्रीय, कुछ तार्किक। एक युक्तिवाद बड़ा चर्चित है, कहते हैं आत्मा कैसी है, आकार से गोल या चौकोर, त्रिकोण, अष्टकोण या षटकोण। आत्मा का स्वाद कैसा, मीठा, खट्टा, कड़वा, तीखा, फीका। कहें आत्मा का रंग कैसा, लाल, हरा, पीला, काला, नीला, सफेद या केसरिया कैसा। अनुत्तरित है ये सारे प्रश्न आत्मा के संदर्भ में। एहसास नहीं होता। मुनि कपिल के तत्व ज्ञान की अन्वेषणानुभूति प्रत्यक्ष में या अनुमान सत्य से। आत्मा का अस्तित्व नापेंगे कैसे, उसका परीक्षण करेंगे कैसे, देखेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। यानी आत्मा के अस्तित्व के संदर्भ में शंका। तब पुनर्जन्म किसका, आत्मा के अस्तित्व की सुविधा कर्मकांड की वृद्धि के लिए तो नहीं, अथवा मानव समूह को भ्रमित

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब हैप्पीनेस के इंडेक्स को हम देखते हैं तो आज भी हमें लगता है कि इंडेक्स जो है वो अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है। हमारी मंजिल क्या है, क्या हम उसे स्टेबिलिटी पर ला सकते हैं, एक इस लेवल पर ला सकते हैं अपने हैप्पीनेस इंडेक्स को? कोशिश यही कर रहे हैं इस पूरी श्रृंखला में। सबसे बड़ी बात हमारे जो पहला प्रयास है वो ये कि कम से कम इसको देख तो पाएं कि दिन भर में हम जो है ऊपर नीचे अपने इमोशंस के साथ होते हैं, खासकर हैप्पीनेस के साथ होते हैं। मंजिल तक पहुंचते जाएंगे जैसे जैसे हम प्रयास करते जाएंगे। आज भी कुछ और बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है जो मुझे टेक ओवर कर जाता है और फिर मेरी अपनी हैप्पीनेस जो मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ वो नहीं क्रिएट कर पाता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, सिचुएशन जब थी, हमारी ये आदत कैसे बनी कि सिचुएशन ने हमें टेक ओवर किया? आई होप आई एम राइट बिकॉज दिस इज व्हाट पीपल आर आल्सो अंडरस्टैंडिंग कि सिचुएशन आई, हम पहले डिटैच रहते हैं, उसके बाद हम जजमेंटल होना शुरू होते हैं लोगों के प्रति या अपने प्रति भी, और उसके बाद हमारी सारी इमोशंस जो हैं वो पूरी सिचुएशन टेक ओवर कर जाती है। व्हाट टू डू नाउ?
1: वन इज़ तो इसको वॉच करना ही शुरू करना अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और

0: प्रैक्टिस करें कि जैसे एक ड्रामा देखते हैं या एक मूवी देखते हैं तो हम ऑडियंस में बैठते हैं ना, ऑडियंस से बैठकर वहां देखते हैं कि स्टेज पर क्या हो रहा है। इस तरह से जीवन की यात्रा में भी चलते हुए ऑडियंस भी बनते जाएं बीच बीच में, यू नो इट इज़ अ लिटिल वी हैव टू प्रैक्टिस हाउ दैट। लेकिन होता क्या है कि हम स्टेज पर भी हैं सो हम एक्टर भी हैं, लेकिन एक्टर के साथ साथ हमें क्या बनना
1: है, व्यूअर,
0: ऑडियंस भी बनना है। क्यों ऑडियंस बनना है? कि ऑडियंस बनने से हम डिटैच्ड होते हैं, यू नो आई एम एन ऑडियंस, ये सब ड्रामा चल रहा है, ऑल द एक्टर्स आर प्लेइंग द रोल, तो डिटैच होकर उनको देखें, जजमेंटल होकर नहीं। जैसे ही जजमेंटल हो गए तो हम उनके रोल के अंदर उनके साथ,
1: that's what I'm saying, as an audience also, I was becoming a part of the whole thing.
0: As a detached observer, साक्षी होकर हर एक के रोल को देखते जाएं। जैसे ही आप साक्षी होकर हर एक के रोल को देखेंगे, आपका माइंड कैसे होता जाएगा? It will become still. उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। और साक्षी होकर दूसरों के रोल को देखते हुए फिर जब अपना रोल प्ले करेंगे तो वो रोल कैसे होगा? You know, then I will be a creative actor. कि मैं जो अपना रोल प्ले कर रही हूँ, क्योंकि मेरा माइंड स्टिल है, स्टेबल है, तो क्रिएटिव है। एक डिस्टर्ब्ड माइंड क्रिएटिव नहीं हो सकता। अभी जब हम ऑटोमेटिक मोड में चल रहे थे तब ये था, आपने जो कहा या जो किया वो मेरे ऊपर इफेक्ट आया, तो मेरी अपनी क्रिएटिविटी
1: कुछ भी नहीं,
0: उसमें कुछ भी नहीं थी। Did I have the power to say to myself कि irrespective of उन्होंने जो बोला है I can remain stable? No, I said नहीं, ये तो natural है, उन्होंने बोला तो मुझे बुरा लगेगा। तो मतलब मेरे पास पावर नहीं थी कि मैं अपने रोल को कैसे प्ले करने वाली हूँ। मेरा रोल डिपेंडेंट था
1: उनके कहने,
0: आपके रोल पर, कि आप अपना रोल कैसे प्ले करेंगे, उस हिसाब से मेरा रोल तो अपने आप ही बनता ही जा रहा था। अब अगर अपने सारा दिन को देखें कि हम जो रोल प्ले कर रहे हैं, क्या हम क्रिएटिवली उस रोल को प्ले कर रहे हैं या हमारा रोल अपने आप ही बनता जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंग टू पीपल? तो वो क्यों? क्योंकि हम हर एक के रोल में इतना घुसे हुए हैं और उनके रोल पर इतने जजमेंटल हो रहे हैं कि उस टाइम पर हम अपने रोल को क्रिएट करना भूल जाते हैं।
1: जब हम फिल्म ही नहीं देख पा रहे, जब हम ड्रामा ही नहीं देख पा रहे वो जज यू नो एक व्यूअर के रूप में, एक साक्षी भाव से, तो हम अपने जीवन में तो
0: आज सारा दिन अगर एक बार ट्राई करें, सिर्फ एक दिन, क्या हम ये ट्राई कर सकते हैं कि हम किसी के भी रोल को, क्या कहें, किसी को भी जज नहीं करते? आज एक दिन, एक दिन नहीं
1: वो
0: करते,
1: अच्छा है, वो गंदा है, वो एक्टिंग कर रहा है,
0: कुछ भी नहीं, या उनको ऐसे करना चाहिए या ऐसे नहीं, एक दिन नहीं करते। हमें करना है या नहीं करना है, लेकिन ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट्स जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन डे। अच्छा, इवन इफ वन डे इज टू मच फॉर यू, जस्ट पुट दैट असाइड फॉर वन आवर। आपको एक दिन ज्यादा भारी लग रहा था क्या?
1: क्योंकि हमें पता था कि पूरे दिन में हमने बहुत सारे लोग ऐसे आने हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे आनी है जो हम भूल जाएंगे।
0: हाँ, तो एक घंटा इज पॉसिबल ना, तो एक घंटा ये करके देखना कि यू नो जस्ट ट्राई टू क्रॉस दैट वन आवर विदाउट गोइंग हर एक के बारे में हर एक सिचुएशन के बारे में, एंड जस्ट एट द एंड ऑफ दैट वन आवर जस्ट सी हाउ यू फील। आप कैसा फील करते हैं वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हो रहा है वो ये कि हर एक के रोल के अंदर आई गेट सक्ड, यू नो आई गेट सक्ड इनटू योर रोल, यू शुड बी लाइक दिस, यू शुड नॉट बी लाइक दिस, यू शुड स्पीक लाइक दिस, यू शुड बिहेव लाइक दिस, आई कुड बी सेइंग दिस बट इवन इफ आई एम नॉट सेइंग आई एम थिंकिंग लाइक दिस, यू नो बहुत सारी जजमेंट्स हम बोल नहीं रहे
1: एक्चुअली,
0: सोच तो सारा
1: मेरे दिमाग में भी यही बात आ रही थी कि अभी एक घंटा जो हम देंगे उसमें अगर कोई सिचुएशन नहीं आई तब तक तो मैं ठीक ही रहूंगा, लेकिन उस एक घंटे में मैं सोचता भी तो बहुत कुछ।
0: बात सोचने की हो रही है, जजमेंटल इज नॉट अपने शब्दों में, जजमेंटल है यहाँ सोचने में। तो एक घंटा अगर ट्राई करें कि जो है जैसा है एवरीवन इज ओके, एक घंटा आई एम नॉट गोइंग टू जज, तो उसमें आपको एक घंटे के एंड में पता चलेगा आपकी बहुत सारी एनर्जी जो ऐसे ही ऐसे सक, यू नो एवरी वन इज, वी वुड से दैट एवरी वन इज सकिंग माई एनर्जी लाइक दिस, सो इट्स नॉट एवरी वन सकिंग, आई एम गिविंग माई एनर्जी टू एवरी वन, आई एम गिविंग इट आउट, एंड आफ्टर गिविंग इट आउट आई गेट, आई फील एम्प्टी, यहाँ खाली हो जाते हैं। और जब जजमेंटल हो रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ थॉट्स पॉजिटिव भी नहीं है ज्यादा, इट्स मोर ऑफ हर एक की कमियाँ कमजोरियाँ बहुत ज्यादा हम देखते, तो ये मेरे ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, एक एक की वीकनेस देखते देखते यहाँ हालत क्या हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द डे। तो अगर हम जो ये साक्षी भाव टीवी के सामने नहीं कर पा रहे, इसको प्रैक्टिकल में करके देखते हैं कि एक घंटा लेट मी जस्ट बी डिटैच्ड, नो वन एंड नो सिचुएशन विल अफेक्ट मी फॉर वन आवर, तो हमें पता चलेगा कि डिटैच्ड होने से कितना अंदर पावर भरती है। फिर जो सेकेंड स्टेज हम वॉच कर सकते हैं, जब मैंने आपको देखना बंद कर दिया तो मैं अपने को देखना शुरू कर देती हूँ। मैं यहाँ आई इवैल्यूएट कि यहाँ क्या हो रहा है। आप जो लास्ट टाइम कह रहे थे ना कि अपने थॉट्स नहीं, हम आई कैन नॉट सी माय थॉट्स, व्हाई कैन नॉट आई सी माय थॉट्स,
1: सो मच आउट।
0: सी एट वन टाइम मेरा ध्यान एक ही पर जा सकता है, तो एक सेकेंड अगर वो एक सेकेंड मैं आपके बारे में सोच रही हूँ तो मैं अपनी तरफ ध्यान नहीं देती। तो जब बहुत ज्यादा और चीजों के बारे में हम सोचते हैं तो ये अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता, थोड़ी देर के लिए यहाँ देखना शुरू
1: करें। एक घंटा, जस्ट वन आवर हम अपने बारे में, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी सिचुएशन के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि सिचुएशन के बारे में भी तो सोच रहे होते हैं, लेकिन यहाँ से शिवानी
0: फिर सोचेंगे क्या हो जाएगा। एक घंटा सोचेंगे,
1: फिर हम ना सिचुएशन रहे ना लोग रहे ना, फिर अब क्या होगा।
0: इट्स नॉट सिचुएशन के बारे में या लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे, जजमेंटल नहीं होंगे
1: कि अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती तो अच्छा होता,
0: ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा। सी वो ये भी हमें पता नहीं है कि हम कितने जजमेंटल हैं, क्योंकि हमने कभी
1: ध्यान नहीं
0: देखा नहीं है। तो जब देखना शुरू करेंगे ना, तब पता चलेगा अच्छा अच्छा आई क्रिएट दीज काइंड ऑफ थॉट्स अबाउट एवरीवन, राइट ना वी नॉट इवन अवेयर के व्हाट क्वालिटी ऑफ थॉट्स आई क्रिएट फॉर एवरीवन। सो वन डे इट्स नॉट दैट आई स्टॉप थिंकिंग, मैंने कुछ नहीं सोचना है, मैंने कुछ नहीं सोचना है, आप अपना नॉर्मल चलो जैसे आप चल रहे हो, सिर्फ ध्यान दो कि मैं क्या सोच रहा हूँ, उसको देखने की कोशिश करो, और जैसे ही आपको वो थॉट मिले कि मैं ये सोच रहा हूँ इनको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, आई जस्ट स्टॉप एंड आई टेल माई सेल्फ इट्स ओके फॉर वन आवर आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट।
1: ऐसा सोचें कि वो प्लीज ऐसा करे, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि हमें क्या नहीं सोचना है।
0: एब्सोल्युटली, और हमें क्या सोचना है कि वो जो है जैसे है
1: अच्छे,
0: इट्स ओके, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस डजंट मीन कि आई एग्री विद यू।
1: मैं कहने वाली थी कि फिर हम तो देखिए इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, और मुझे किसी सिचुएशन को या किसी व्यक्ति को टोटालिटी में देखना होगा ना, क्लैरिटी में, मुझे उनके नेगेटिव भी देखने होंगे, पॉजिटिव भी देखने होंगे। सो अगेन क्या मैं अपने आप को उनका नेगेटिव, क्योंकि होता यह है कि जब मुझे उनके बारे में जजमेंटल नहीं होना तो मैं ये कहूंगा कि मैं उनका नेगेटिव देखूंगा ही नहीं।
0: यू नो इट्स नॉट, दिस इज अ गुड पॉइंट, बट इट्स नॉट अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट्स ओनली दैट वी आर डिफरेंट।
1: या बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक नेगेटिव,
0: वी आर डिफरेंट। मुझे जो चीजें अच्छी लगती हैं वो मैं अपने लिए पॉजिटिव की कैटेगरी में डालूंगी, और जो मुझे नहीं अच्छी लगती आई पुट देम इन द नेगेटिव। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे टाइम पर आना अच्छा लगता है, तो जो भी लेट आए वो मेरे लिए क्या है,
1: गलत हो गया,
0: नेगेटिव है। लेकिन वो एक्चुअली जो लेट आ रहा है उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है उस बात से, दे आर जस्ट कंफर्टेबल विद द वे दे आर।
1: फिर कुछ चीजें ऐसी हैं शिवानी जो कहा जाता है कि जो सही ही है, यू नो, मर्यादाओं में रहते हुए, मतलब समाज में रहते हुए कि टाइम पे आना, तो इट्स
0: सी मर्यादाएं भी कौन बना रहा है। इवन इफ यू जस्ट सी द कल्चर इन द ईस्ट एंड यू सी द कल्चर इन द वेस्ट, आपको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। जब हम अभी लंदन गए रिसेंटली, सो हमने व्हाट डिड वी सी, वी सॉ दैट जो ट्रैफिक वहां पर चलता है वो बहुत स्मूथ चलता है। हम लोग रोड पर ऐसे खड़े थे क्रॉस करने के लिए, वो गाड़ी रुक गई, एंड आई वाज लाइक, आई जस्ट आस्क्ड द सिस्टर, आई सेड हमने कुछ गलत किया है क्या, वो गाड़ी क्यों रुक गई, तो शी सेड वो गाड़ी रुकी है ताकि आप क्रॉस कर जाओ। नाउ दिस इज एन एलियन कॉन्सेप्ट फॉर मी, इट डजंट हैपन हियर। सो एवरीवन हैज क्रिएटेड देयर ओन कल्चर, देयर ओन वे ऑफ लिविंग, तो हम कहेंगे वहां ऐसा नहीं होता। नाउ इट्स नॉट अबाउट वो राइट है या इंडिया में जो होता है वो, दे जस्ट बोथ राइट फॉर देम, बट हम तुरंत जजमेंटल हो जाएंगे,
1: देखा
0: ये राइट है वो वाला रॉन्ग है या ये वाला राइट है। नो इट्स नॉट, इट्स जस्ट दैट इट्स डिफरेंट। जैसे हम राइट और रॉन्ग उसको लेबल कर देते हैं तो एनर्जी चेंज हो जाती है। सी इफ आई से यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी, बट इफ आई से यू आर रॉन्ग, इट्स अ डिफरेंट एनर्जी, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। So when I create this thought about anyone, कि ये different है, it may be कि मेरे से मैच नहीं करता आपका वो संस्कार, आपका वो स्वभाव, आपका वो व्यवहार, लेकिन व्हेन आई क्रिएट अ थॉट ये डिफरेंट है, आई मे नॉट लाइक इट बट इफ आई से दिस इज रॉन्ग, दिस इज बैड, देन मैं व्हाट एनर्जी आई सेंड आउट टू यू, दिस इज नेगेटिव एनर्जी, दिस इज लैक ऑफ रिस्पेक्ट, दिस इज लैक ऑफ लव, एंड दिस विल क्रिएट अ डिस्टर्बेंस हियर. इफ आई एक्सेप्टेंस मीन्स आई अग्री आप डिफरेंट है, मैं डिफरेंट हूँ, आई एक्सेप्ट द डिफरेंस, आई डोंट रेजिस्ट द डिफरेंस, आई एक्सेप्ट. जब हम रेजिस्ट करते हैं डिफरेंस को तो हम दूसरे को अपनी तरह बनाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमने जजमेंट ये पास की है कि मैं सही हूँ आप गलत हैं. बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड ये बहुत क्रिटिकल है,
1: इवन हस्बैंड वाइफ, यू नो.
0: Yeah. Yes. Parent and child, why I said, because parents बहुत ज्यादा ये अथॉरिटी के साथ हर टाइम हम चलते कि हम सही हैं, बच्चे गलत हैं. See, again, intention बहुत अच्छी है. कई बार intention बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसको अगर हमें किसी को कुछ सिखाना है, मतलब उनको empower करना है ना, लेकिन जगह हम ये energy भेजते हैं कि you're wrong, you're bad, this is wrong, तो हम उसको empower नहीं कर रहे, हम उसको actually disempower कर रहे हैं.
1: कोई drugs ले रहा है या smoke कर रहा है या drink कर रहा है, how do we take it, you know, this is again, it's very difficult, because first thought which will come is that he needs to change, he needs to stop.
0: He needs to change is a different energy, and he is bad is a different energy.
1: Actually, I consciously tried to be, not create the thought, but the first thing which comes to your mind is, this is wrong.
0: Yeah, this, अब क्या होता कि जो भी बच्चा ऐसा कुछ ले रहा है, बच्चे क्यों, बड़े भी ऐसे ले रहे हैं कोई, तो घर में पूरा वायुमंडल ये बन जाता, आप गलत हैं, आप बुरे हैं, ये पाप है, ये, you know, this kind of energy.
1: हमारा क्या होगा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, you know, it's like, forget about, वो तो खैर है ही गलत, हमारी जिंदगी में हमारे ही बच्चे नहीं करना था,
0: तो फिर वो मेरी पेरेंटिंग स्किल पर भी तो क्वेश्चन मार्क उठ जाता है ना. तो ये जब हम एनर्जी, पहली बात, जो भी कुछ ऐसा कोई स्टिम्युलेंट ले रहा है उसके जीवन में कुछ थोड़ा सा तो वैक्यूम है, यू नो, समवेयर सेल्फ एस्टीम थोड़ी सी लो है, एंड ये स्टिम्युलेंट्स मुझे उसको भरने में मदद करते हैं. लेकिन अब वो लो सेल्फ एस्टीम के साथ, वो कोई हर्ट के साथ, दर्द के साथ मैंने वो लेना शुरू किया, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग मी एंड सपोर्टिंग मी एंड एम्पावरिंग मी हाउ टू कम आउट ऑफ माई पेन, सबसे मुझे क्या मिला, आप बुरे हो, आप गलत हो, आप ये
1: rejection,
0: हो, रिजेक्शन मिला. मैंने एक्चुअली वो लेना ही इसलिए शुरू किया होता है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वो रिजेक्शन की एनर्जी या हर्ट की एनर्जी थी. अब एक्चुअली वो छोड़ने के लिए मुझे चाहिए होगा कि वो भरा जाए, वो जो मेरे अंदर का वैक्यूम है वो भरा जाए. लेकिन हमारी इंटेंशन बहुत राइट होती है, हम चाहते हैं कि वो बच जाए उन चीज़ों से, लेकिन हम उसके रूट को नहीं देखते हैं. हम ये देखते हैं कि ये ले रहा है, ये इसकी हेल्थ के लिए बहुत बुरा है, तो हम उसको रोज कहते हैं ये गलत है, ये छोड़ दो. हम ये नहीं समझते ये क्यों ले रहा है, और वो जो रीज़न जिसके कारण ये ले रहा है वो तो इससे भी ज़्यादा बुरा है. अगर मेरे अंदर कोई दर्द है, वो दर्द तो इस स्मोकिंग से या अल्कोहल से भी ज़्यादा बुरा है. ये स्मोकिंग और अल्कोहल मेरे शरीर के लिए हानिकारक है, ओके, लेकिन वो जो दर्द मैंने पकड़ के रखा है, रिजेंटमेंट, वो मेरे लिए कितना हानिकारक है. तो आई जस्ट नीड टू गो वन स्टेप बिहाइंड. जेन्युइन लव है ना, कंसर्न है, तो क्या करे, एक स्टेप पीछे जाए. ये स्टिम्युलेंट्स छूट जाएंगे अपने आप, लेट इट बी राइट नाउ फॉर सम टाइम. एक स्टेप पीछे जाकर ये क्यों ले रहे हैं, वैक्यूम है. तो इंस्टेड ऑफ उनको ये एनर्जी भेजे कि आप गलत हो, इफ यू कैन सेंड देम दैट एनर्जी ऑफ लव, ऑफ रिस्पेक्ट. हम कहते हैं लेकिन प्यार तो हम बहुत करते हैं ना, प्यार में हम बार बार ये नहीं कह सकते आप बुरे हो, आप गलत हो, ये पाप है, ये दूसरे को डिसएम्पावर करता है. आप उस बात को साइड रखो कि वो क्या ले रहे हैं, आप इग्नोर कर दो, इवन इग्नोर कर दो आप उसको थोड़े दिन के लिए, आप सिर्फ उसके वो दर्द को भरो, जस्ट बाय गिविंग जेन्युइन रिस्पेक्ट, नॉट बाय सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलकर, अंदर से वो भर जाएगा ना, वो स्टिम्युलेंट तो ऐसे छूट जाएगा. और अगर वो भरेगा नहीं, आप रोज लड़ते रहो उस बात के लिए कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो,
1: उससे भी पहले अपने आप को तो भरें, यू नो, क्योंकि हमने इतना दर्द क्रिएट किया है इस पूरे थॉट से कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ये कर रही है, या मेरा हस्बैंड ये कर रहा है, एंड सो वी जस्ट गो इनटू सो मच ऑफ अ डीप. यस,
0: सो वन, नाउ अगेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जजमेंट, अगर कोई मेरे आसपास ऐसा कुछ कर रहा है,
1: तो आई एम नॉट बैड,
0: नॉट टू बी जजमेंटल अबाउट इट. आप जजमेंटल नहीं होते ना जैसे, तो सामने वाले को आपसे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है. और जैसे ही आप जजमेंटल होते हैं, भले आप बोलेंगे कुछ नहीं, आप ऊपर से बात अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी
1: उन्हें पता होता है, यू नो, सो मेनी टाइम्स दे से दैट आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग.
0: एग्जैक्टली, सो दैट एनर्जी रीचेस. तो एक दिन के लिए ये ट्राई करना कि औरों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचना, फिर अपने थॉट्स को देखना शुरू करना, अपनी फीलिंग्स को, इमो, धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि ये जो थॉट्स भी हो रहे हैं ना, ये क्रिएट किए जा रहे हैं. आई एम क्रिएटिंग दीज थॉट्स. आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस थॉट्स. आई एम नॉट इवन द थॉट. आई एम नॉट दिस रोल. आई एम नॉट दिस, यू नो, द बॉडी, बट आई एम नॉट इवन द थॉट. दैट ऑल्सो आई एम क्रिएटिंग. आई क्रिएट दैट थॉट. जैसे ही आप उस लेवल पर आते हैं कि आई क्रिएट दिस थॉट, आई क्रिएट दिस फीलिंग, आप थॉट से भी डिटैच हो सकते हैं. आप, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला
1: ये थॉट मैंने क्रिएट कर दिया,
0: तो मतलब मैं कोई और हूँ ना. जैसे मैंने कहा ये मैंने क्रिएट किया, तो मैं कोई और हूँ. एंड ये स्थिति में जब आप पहुंचते, तो दिस इज स्टिलनेस. जो हम कई बार बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस वॉट इज दैट स्टिलनेस, वॉट इज साइलेंस. तो साइलेंस है, एक तो यहाँ से साइलेंस, और एक है यहाँ साइलेंस. तो यहाँ साइलेंस मतलब ये नहीं कि हम सोचना बंद कर देंगे. कई बार भाई बहने मेडिटेशन मीन्स ट्राई करते हैं हम थॉट्स ही नहीं क्रिएट करें, नॉट रियली पॉसिबल. लेकिन सिर्फ साक्षी होकर देखें कि ये भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ. जैसे ही वो देखेंगे ना, उसकी स्पीड भी स्लो डाउन हो जाएगी, क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट इनर स्टेबिलिटी, दैट साइलेंस, दैट पीस. ये एक्सपीरियंस करना है. क्या होता है, नॉर्मल में, नॉर्मल एक्टिविटी में वी आर क्रिएटिंग अबाउट 25 टू 30 थॉट्स पर मिनट. दिस इज मेडिकली बीन कैलकुलेटेड. ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो मशीन होती है, उस पर ये वेव्स आते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन बिहाइंड दैट. 25 टू 30 थॉट्स
1: पर मिनट,
0: पर मिनट नॉर्मल स्टेट में. इसको हम कहते हैं बीटा स्टेज ऑफ द माइंड, के नॉर्मल स्टेट ऑफ द माइंड में. और अगर हम माइंड के वेरियस स्टेजेस को देखें सारा दिन, तो अप्रोक्सीमेटली इट विल कम टू सारा दिन में 40,000, 40,000 to 50,000 थॉट्स हम क्रिएट करते हैं. दिस इज माई प्रोडक्शन. ये जैसे एक कंपनी है और उसकी ये प्रोडक्शन है, 40,000 थॉट्स अ डे. क्वालिटी,
1: it's all waste actually. maximum times, you know.
0: तो उसमें कई thoughts बहुत powerful, positive होते, कई negative होते हैं, गुस्सा, resentment, चिंता, कई necessary होते हैं कि ये करना है, आज ये जान, और बहुत सारे waste होते हैं. waste मतलब बहुत ज़्यादा जो बीत गया, या बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचना जो अभी हुआ ही नहीं, तो उसमें कोई पावर नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, नीदर द पास्ट नॉर द फ्यूचर. तो इतनी सारी हमारी थॉट्स की स्पीड है. आर वी एवर अवेयर कि हम एक मिनट में 25 to 30 थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं? तो इसलिए बहुत फास्ट है. तो जब हम मेडिटेशन में बैठते, तो ये धीरे धीरे स्लो होता. मेडिटेशन भी नहीं, अगर आप सिर्फ इसको वॉच करना शुरू कर दो, ये स्लो डाउन हो जाएगा. यू विल गेट टू सी द स्पीड. और तब अगर इसको हम थोड़ा सा भी स्लो करते, तो हमें लगता है ये तो हमने सोचना ही बंद कर दिया. तो सोचना बंद नहीं किया, लेकिन सोचने की स्पीड को बहुत स्लो कर दिया है. तो हैप्पीनेस मीन्स व्हेन माय थॉट्स डोंट गो लाइक दिस, बट दे आर एब्सोल्युटली स्टेबल. एक कंटेंटमेंट, एक इनर पीस. हम बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं कि संतुष्टता क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, पीस क्या है. इट्स ऑल दिस फीलिंग वेयर यू आर इनसाइड एक्चुअली जस्ट कंफर्टेबल. जब भी ऐसे ऐसे कुछ भी होता है, वो कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन आप बिल्कुल स्टेबल हैं, कंटेंटेड हैं. दिस इज हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज नॉट एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट इज डिफरेंट. हमने आइसक्रीम खाई आज, कहते आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर, दैट्स नॉट हैप्पीनेस. वो तो एक सेंसेशन है. एक सेंसेशन थी टेस्ट बड के द्वारा मुझे मिली, एंड दैट इज, यू नो, गिविंग मी दैट सेंसेशन. आई से दिस इज हैप्पीनेस. सपोज लेट्स से कि मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आज कुछ हुआ ना, वो ठीक हो गया. से आई एम वेरी हैप्पी, यू नो, माई, दिस इज नॉट हैप्पीनेस. वो दर्द था, आई हैव गॉट रिलीव्ड फ्रॉम माई पेन, सो इट्स अ रिलीफ. देन आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड. लेकिन हम इन सारी चीज़ों को नाम क्या दे देते हैं? हैप्पीनेस. और इस प्रोसेस में हैप्पीनेस एक्चुअली क्या है वो भूल जाती है.
1: तो वो जो सारी चीजें अगर हमें नहीं मिल रही हैं, तो हम से वी से दैट वी आर नॉट गेटिंग हैप्पी.
0: या दैट्स व्हाई, एंड देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर इट आउटसाइड. तो हैप्पीनेस चाहिए नहीं एक्चुअली. कुछ भी नहीं करना है खुश रहने के लिए. खुश हम ऑलरेडी हैं. सी, इट्स अ डिफरेंट थिंग. एक है कि यहाँ, यू नो, इट्स लाइक अ ग्लास. आई एम गोइंग थ्रू लाइफ टुडे विद द फोकस कि ये जो मेरा ग्लास है ना ये खाली है, प्लीज इसको भरो, कुछ ना कुछ ऐसा होता जाए जिससे ये भरता जाए. जस्ट चेंज द फोकस वन डे कि ये ग्लास ऑलरेडी भरा हुआ है, अब सिर्फ सारा दिन क्या करना,
1: इसको बाहर नहीं जाने देना,
0: संभाल के चलना है कि हर छोटी छोटी बात में ये स्पिल ऑफ नहीं कर जाए, क्योंकि ये इतना जल्दी स्पिल ऑफ करते जाते हैं सारा दिन में, फिर एट द एंड ऑफ द डे वी फाइंड आवरसेल्व्स वेरी एम्प्टी, वेरी डिप्लीटेड.
1: दिस बिकम्स वेरी बोरिंग.
0: अगेन अगर आपने एक्साइटमेंट को अपनी हैप्पीनेस के साथ रिलेट कर दिया,
1: तो जब वो नहीं होगी तो आप,
0: हाँ, और एक्साइटमेंट भी बहुत हेल्दी नहीं है एक्चुअली माइंड के लिए. एंड जैसे फियर है तो वो लो स्टेट है, एक्साइटमेंट उसका अदर ऑपोजिट है, तो ये दोनों चीजें स्टेबिलिटी नहीं है. और फिर हम दोनों
1: एक्चुअली हम दोनों में वी से दैट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, यू नो,
0: इट गिव्स अ वेरी
1: पिट ऑफ माय स्टमक, ऐसे कुछ फील होता है, चाहे डर लग रहा है चाहे बहुत खुशी हो रही हो.
0: एंड दोनों चीजों में आपको अपनी फिजियोलॉजी पर इम्पैक्ट दिखाई देगा
1: शरीर पर.
0: यहाँ नॉर्मल नहीं रहता है आपकी हार्ट, एक्साइटमेंट में आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है नहीं, डर में भी आपकी हार्ट बीट नॉर्मल, आपकी पल्स रेट नॉर्मल, एनीथिंग दैट्स नॉट नॉर्मल. Now we know this is what is abnormal, but we thought ये normal है. See, मन पर तो शायद हमें अभी नहीं पता चले कि कितना impact पड़ रहा है, physiology पर तो दिखाई दे रहा है ना, तुरंत you will find your heart beating so fast. How's that normal? The happiness is that stability. तो अब क्या होगा, situation specific नहीं है, अब चाहे कुछ भी हो जाए सारा दिन मेरे आसपास, मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मुझे अपनी stability को नहीं खोना है. इट डजंट मीन मैं कुछ नहीं करूं, मैं कुछ नहीं कहूं किसी को, बच्चे ने कुछ गलत किया, मैं कहूं या नहीं कहूं, कहें, लेकिन दो चॉइसेस हैं, या तो गुस्सा होकर कहें, डिस्टर्ब होकर कहें, या फिर स्टेबल रहकर करें. वो पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल? वी थॉट रिएक्ट करना, गुस्से से बोलना, डिस्टर्ब होना, दिस इज द ओनली वे टू डिसिप्लिन समबडी. सुनो, सो व्हाट वी कुड ट्राई वन डे इज डू एवरीथिंग. आपको काम करवाना है लोगों से, आप काम करवाओ, डिस्टर्ब हुए बना. और इसको सिर्फ एक दिन का एक्सपेरिमेंट करना है. वी ऑलवेज ट्राई दिस एज अ 24-hour एक्सपेरिमेंट. 24 घंटे इसको ट्राई करना है कि आज एक दिन चाहे कुछ भी हो जाए मेरे आसपास, एंड कुछ भी देन मीन्स कुछ भी, कुछ भी, जस्ट वन डे आई विल नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, जस्ट वन डे आई विल डू एवरीथिंग जस्ट विद दिस रिमेम्बरेंस, आज एक दिन स्टेबल. और यू विल रियलाइज ये बहुत बहुत ईजी है, इट्स सिर्फ किया नहीं था अभी तक. ट्रैफिक में अटके, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं, किसी ने रॉन्ग साइड से ओवरटेक कर लिया, कैसे चलाते हैं पता नहीं, इनको लाइसेंस कौन दे देता है, ऐसे ही है ये, तो ये है सारी सारा दिन. सिर्फ एक दिन वो नहीं करना है, सब कुछ करना है, सिर्फ एक दिन डिस्टर्ब नहीं होना, स्टेबल रहना. एंड यू विल रियलाइज इसके लिए कोई विधि, कोई तरीका सीखना नहीं है कहीं से, इसको सिर्फ याद रखना है कि मुझे एक दिन स्टेबल रहना. एंड यू सी हाउ मच एनर्जी यू विल सेव, डेफिनेटली.
1: सो ये जो स्टेबिलिटी है ये हमें कितनी स्ट्रेंथ देती है और कितना हमें एनर्जी देती है एक्चुअली, कितना कुछ और करने के लिए करती है. तो ये हम अपने साथ करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हमारे लिए रहेगा. और आपसे हर बार कहेंगे कि कुछ भी जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कुछ भी आप समझ पा रहे हैं, उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, खुला निमंत्रण हर बार की तरह. तो या तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. सीसा शिवानी, जो जो आज हमने समझा है उसे हमने किया तो है, ट्राई किया है उसे समझे, लेकिन एक और बात समझ में आई हुई है कि साइलेंस में जैसे बैठते हैं वो डीप हमारे सबकॉन्शियस में जब बैठने लगता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है. तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ मिनट अगर हम रिफ्लेक्ट करें,
0: कंफर्टेबल होकर बैठे और अपने थॉट्स को consciously create karne ka prayas kare. Let me look at myself, the creator, the master, the powerful being. I, the creator of every thought, has a choice. Mere aas paas chahe kuch bhi ho jaye, I choose stability. Chahe koi kuch bhi kahe, I choose stability. और जैसे ही I remain stable, situation परिवर्तन हो जाती है। एक क्षण के लिए अपने आप को उस व्यक्ति के सामने देखें जो आज दिन तक हम समझते थे कि ये मुझे गुस्सा दिलाता, ये मुझे डिस्टर्ब करते। अपने आप को उनके सामने देखिए, वो वैसे ही है, वैसे ही बोल रहे हैं, वैसा ही व्यवहार, लेकिन अपने आप को देखें, आई एम स्टेबल। उनके बोल, उनके व्यवहार मेरे मन पर प्रभाव नहीं डाल सकते। आई चूज माई रिस्पॉन्स बिकॉज आई एम द पावरफुल बींग। ओम शांति,
1: ओम शांति। अगर इन रिफ्लेक्शंस को देखें तो कहीं ना कहीं वो शक्ति जो बाहर से तलाश रहे थे, इन सॉफ्ट इमोशंस, जिन्हें हम सॉफ्ट इमोशंस कहते थे, चाहे वो हैप्पीनेस था, पीस था, लव था, वो मुझे कितना शक्तिशाली बनाता है। तो आज खुशी की और शांति की, स्टेबिलिटी की इस शक्ति को अपने अंदर महसूस करने का प्रयास करें। आज इतना ही, आगे मुलाकात होगी। ओम शांति।

0: भूदान की तरह साल की अखंड पदयात्रा में विनोबा ने सर्दी, गर्मी और बारिश की सतत मार सहन की है। कुदरत की क्या करामात थी कि जहां सबसे अधिक गर्मी, वही गर्मी के दिनों में उनकी पदयात्रा चलती थी। जहां सबसे अधिक ठंड, वही ठंड के दिनों में घूमने का कार्यक्रम बनता था। यही हाल बारिश का। बारिश के ही दिनों में उनकी असम यात्रा और केरल यात्रा चली। लोग कहते, बाबा अब तो बैठिए, कब तक घूमते रहेंगे, इतना कष्ट इस जर्जर शरीर को क्यों दे रहे हैं, थोड़ा उसकी तरफ भी तो देखिए।
1: तुम लोग कुछ नहीं जानते, इस यात्रा में इस देह को थोड़ी सी तकलीफ हुई होगी, परंतु बापू सतत मेरे आगे पीछे रहते हैं और मुझे संभालते हैं, इसीलिए तो मुझे ना कोई तकलीफ है ना कोई चिंता।
0: भूदान पदयात्रा में एक डच सज्जन विनोबा जी से मिलने आए। पहले ही मुलाकात में उन्होंने कहा, विनोबा जी आपके भारत में मैं आया था गांधी जी को देखने। मैं दिल्ली गया, बंबई गया और भी कई जगह भटका, परंतु गांधी कहीं नहीं दिखाई दिए। इज ही रियली डेड? क्या वे सचमुच मर गए?
1: नो सर, ही स्टिल लिव्स। सर्वोदय के काम में लगे हुए 4-5 हजार सेवक जो गांव-गांव भटककर तपस्या कर रहे हैं, उनके दिल में गांधी जिंदा बैठा है, उन्हें गांधी जी ही घुमा रहे हैं और मुझे भी।
0: ऐसे ही एक दफा किसी ढलती हुई शाम को बाबा अपने 4-5 साथियों के बीच बैठे हुए थे। लालटेन का हल्का प्रकाश बाबा के मुंह पर पड़ रहा था। बापू के बारे में बातें चल रही थी। बाबा भूतकाल में खोते जा रहे थे, एक के बाद एक प्रसंग कहते जा रहे थे। आखिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और धीरे से गदगद आवाज सुनाई दी,
1: वे हुक्म दें और मैं उनके हुक्म को उठा लूं, यही आज तक का मेरा जीवन रहा है।
0: पौनार का पवित्र परमधाम आश्रम, सुबह का शांत शीतल समय। ब्रह्म विद्या मंदिर के सभी सदस्य अपने अपने दैनिक कार्यक्रम में व्यस्त थे। नहा धोकर जब मीराबेन बाबा की छोटी सी कुटिया में जाकर देखती है तो कुछ नई प्रवृत्ति में बाबा अकेले व्यस्त थे। बिछावन अस्त व्यस्त पड़ा था और नीचे बैठक जमाने का प्रयास चल रहा था। पूछा, क्या करना है?
1: नीचे सिर्फ दरी और तकिया ही रखनी है, बाकी सब निकाल दो।
0: मीराबेन ने कहा, बाबा पहले पाट पर की गद्दी निकाल दी, फिर पाट ही निकाल दिया, अब नीचे सिर्फ दरी रखने के लिए कह रहे हैं, क्या बात है?
1: देखो, एक तो हमारी ये छोटी सी कुटिया, उसमें पाट हो तो फिर आने वाले को बैठने में मुश्किल होती है, सब नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठूं, यह भी ठीक नहीं। इस दृष्टि से मैंने पाट निकलवा दिया और नीचे बिछाने का शुरू किया, परंतु नीचे की बैठक में मेरी इस मोहिनी पर सबका पांव पड़ता है, यह ठीक नहीं। इसलिए आज से तय किया है कि दिन में दरी पर नीचे ही बैठना और लेटना, रात को पाट पर सोऊंगा और मोहिनी मेरे नीचे नहीं रहेगी परंतु मेरे सिरहाने रहेगी।
0: और विनोबा ने बिस्तर में से एक ब्राउन रंग का कंबल हाथ में लेकर मीराबेन को बुलाया। कोने में बापू का नाम लिखा हुआ था। उनका पारायण बाबा की मुंह से अनेक बार सुनने को मिलता था, आज फिर से सुनने को मिला।
1: तुम जानती हो इस मोहिनी की कहानी? सन 1950 में मेरा दिल्ली जाना हुआ, तब बापू का यह कंबल मुझे बख्शीश में दिया गया, तब से वह मेरे पास ही है। बापू की यह स्मृति है इसलिए उसका नाम मैंने मोहिनी रखा है। रोज नीचे बिछाकर इतने साल सोया हूं, मेरे पास सुरक्षित रहा है। गांधी स्मारक वाले जानेंगे तो मैं मानता हूं कि मुझसे मांगेंगे नहीं, क्योंकि मैं उसे संभालता हूं।
0: वैराग्य के प्रखर वैनाश्वर में जिनके मोह, ममत्व और आसक्ति का कण कण सुलग कर भस्म हो चुका है, निरासक्त सन्यासी का उत्तम नमूना जिसने अपने जीवन के द्वारा दुनिया के समक्ष खड़ा किया है। उस बैरागी को मोहिनी की मोहिनी से मोहित देखा तो मेरा सिर उनके इस अलौकिक प्रेम के आगे झुक गया। मोहन उनके शरीर के रोम रोम में व्याप्त हो गया है। इसकी प्रतीति हुई। मोहन की मीठी याद दिलाने वाली उस मोहिनी सेज पर सोने के लिए रोज रात को जय जगत करके ये शुभ्र वस्त्रधारी मूर्ति जब मच्छरदानी में अदृश्य होती है तब बहुत बार लगता है कि बाबा बापू में समा गए। बापू के शिक्षण का निचोड़ विनोबा ने इस प्रकार रखा है।
1: सत्यम जीवन का लक्ष्य, संयम जीवन की पद्धति, सेवा जीवन का कार्य, यह सब आचरण में उतरे यही भगवान से निरंतर प्रार्थना है।

0: भगवान कृष्ण 12 साल की शिक्षा पूरी करके गुरुकुल से घर जाने वाले हैं। विदा लेते समय गुरु संदीपन के पास आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि जब तक जीऊं मातृ हस्तेन भोजनम मिले। विनोबा जी भी कहते हैं कि
1: जिन श्रीमंत बच्चों को जन्म लेने पर मां के बदले आया का दूध मिलता है वह गर्भ श्रीमंत नहीं, वह गर्भ दरिद्र है। मां का दूध ना मिले, मां के हाथ का भोजन ना मिले, उसके जैसा दूसरा दुर्दैव क्या। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन सबको मैंने अपने हाथों से भोजन पकाकर खिलाया है। जेल में भी जेल को आश्रम बनाते वक्त मैंने रसोई का काम उठा लिया था। मेरे हाथ की रसोई यानी बिना मिर्च मसाले की। पहले तो राजनीतिक कैदियों में से 10-15 लोग ही बिना मिर्च मसाले की रसोई खाते थे क्योंकि सबको तीखा पसंद था। परंतु जब मैंने रसोई बनाना शुरू किया तो सब राजनीतिक कैदी सादी रसोई ही ज़्यादा पसंद करने लगे। धीरे धीरे दूसरे कैदी भी उसमें शामिल होने लगे। फिर तो संख्या इतनी बढ़ गई कि जेलर को प्रार्थना करनी पड़ी कि कृपया आप दूसरे कैदियों के भोजन की जिम्मेदारी मत उठाइए।
0: रसोई को विनोबा फाइन आर्ट कहते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि रसोई सुखादु बननी चाहिए और खाना चाहिए अस्वाद की भावना से। रसोई का स्वाद सिर्फ मिर्च मसाले से नहीं आता है, उनमें जब भाव उड़ेला जाता है तब मनपसंद भोजन बनता है। माँ के हाथ से जब रसोई बनती है तब रसोई की प्रत्येक प्रक्रिया में माँ के हृदय का भाव उड़ेला जाता है। उसका वो कर्म उपासना रूप होता है। जेल में सब राजनीतिक कैदी अपने पढ़ने के लिए अपनी रुचि की किताबें मंगवाते रहते थे। जेल का एक सरकारी अफसर उन पुस्तकों को देखकर आपत्तिजनक पुस्तकों पर रोक लगाता था और देने जैसी पुस्तकों की इजाजत देता था। दूसरे सब कैदियों की रोज बर रोज कुछ न कुछ शिकायत सुनाई देती थी कि आज फलानी किताब को रोका गया क्योंकि सरकार की दृष्टि से वो खतरनाक थी। विनोबा की किताबों पर कभी कोई रोक नहीं लगती थी क्योंकि उनकी फेहरिस्त में गीता, उपनिषद, पुराण जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ रहते थे। एक दिन किसी ने कहा, हम सहस्त्र किताबें मंगाएंगे तो उनमें से हमें एक दो मिलेंगी और विनोबा की सभी किताबें मंजूर होकर आएंगी। तब विनोबा ने कहा,
1: यह सरकार मूर्ख है, खतरनाक क्या है, उसकी उसे कोई पहचान ही नहीं है। अकल होती तो उपनिषद गीता को सरकार जरूर रोकती और दूसरी किताबें जिनसे वह भड़की हुई रहती है उन्हें आने देती। गीता का आधार नहीं होता तो अंग्रेज सरकार के लिए महाखतरनाक गांधी गांधी ना बनते, तिलक तिलक ना बनते, श्री अरविंद अरविंद ना बनते। जिन ग्रंथों में जीवन का अधिष्ठान है वे ही ग्रंथ जुल्मी सत्ता में बारूद लगा सकते हैं।
0: स्वराज आंदोलन के सैनिकों की सजा थी जेल यात्रा। 1943 में एक बार सिवनी जेल से कैदियों को दक्षिण में वेलूर जेल ले जाया गया। दूसरे कैदियों के साथ विनोबा भी सवेरे वेलूर जेल में पहुंचे। जेलर हाजिर था। सब कैदी राजनीतिक थे इसलिए हर एक को अपनी अपनी आवश्यकता बताने के लिए जेलर ने कहा। प्रत्येक ने अपनी अपनी आवश्यकताएं बताई। जब विनोबा की बारी आई तब उन्होंने कहा,
1: मुझे दो चीजों की जरूरत है। ये जरूरतें पहले पूरी होनी चाहिए। एक तो मेरे सिर के बाल बहुत बढ़ गए हैं इसलिए नाई चाहिए, और दूसरे मैं तमिल सीखना चाहता हूँ इसलिए मुझे कोई तमिल शिक्षक चाहिए।
0: विनोबा ने पहले ही दिन से तमिल भाषा सीखना आरंभ कर दिया। बेचारे तमिल शिक्षक को लगता था कि ये मनुष्य तमिल क्यों सीखता है, क्या मद्रास में व्यापार करना चाहता है। वे जेल में 4 महीने रहे परंतु दूसरे कैदियों की मदद से दक्षिण की चारों भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम उन्होंने सीख ली। वे मानते हैं कि जिस प्रांत का अन्न खाते हैं उस प्रांत की भाषा न सीखे तो वो प्रांत द्रोह माना जाएगा। दूसरा, राष्ट्र की भावनात्मक एकता सिद्ध करने के लिए प्रत्येक अदक्षिणी को दक्षिण की कोई न कोई भाषा सीखनी ही चाहिए। जेल के प्रांगण में एक जगह घास को कतर कर 1945 लिखा था। हर साल ये डिजाइन बदल दी जाती थी। पुरानी घास निकाल डालते थे, चालू वर्ष के अंक बना दिए जाते थे। उसका दृष्टांत देकर विनोबा अपने साथियों को समझाते थे।
1: घास के प्रत्येक तिनके का अपना अपना स्वतंत्र प्रयोजन है, परंतु उन सब तिनकों का मिला जुला एक सामूहिक प्रयोजन भी है, और वह है 1945 बनाना। यह बात ये तिनके नहीं जानते, वे तो उगते हैं और मिटते हैं, परंतु सब मिलकर एक प्रयोजन सिद्ध होता है। हम सब भी तिनके जैसे ही हैं, हम अपना प्रयोजन देखते हैं, परंतु इस सृष्टि में अपना क्या प्रयोजन है वह हम नहीं जानते, परंतु कोई ऐसा प्रयोजन जरूर है जिसके लिए सृष्टिकर्ता ने हमें पैदा किया।
0: वेलूर जेल में विनोबा और उनके साथी जब पहुंचे, उसके पहले कोंडी वेंकट्टा नाम के भाई वहां पहुंच गए थे और उन्होंने कैदियों में प्रार्थना शुरू करवा दी थी। प्रार्थना में गीता के 11वें अध्याय से कुछ श्लोकों का पाठ कराया जाता था और फिर रामधुन आदि बापू की प्रार्थना करवाते थे। क्रम में कुछ फर्क था। जेल में बापू के कुछ अनुयायी गए, उनको ऐसी प्रार्थना पसंद नहीं आती। वे विनोबा से कहते रहते कि आपको जोर देकर कहना चाहिए कि बापू ने जो क्रम रखा है वही क्रम रखना चाहिए, क्रम भंग होना अच्छा नहीं है, ये बात आपको उन्हें समझानी चाहिए।
1: भाई, मुझसे ये काम नहीं बनेगा। भारत में हिंदुओं में एक ही प्रार्थना चले, यह असंभव है। जिसके हृदय को जो स्पर्श करे वही प्रार्थना हो सकती है। हिंदू धर्म की यही विशेषता है कि उसमें हजारों संप्रदाय रह सकते हैं। तिलक ने हिंदू की व्याख्या की, उपास्यानाम अनियमः साधनानाम अनेकता। जिस धर्म में साधना की अनेकता हो, मतलब किसी एक ही निश्चित साधना का आग्रह ना रखा जाए, वही तो हिंदू धर्म है।
0: गोपाल राव काले विनोबा के बचपन के सहपाठी रहे हैं। जेल में रहते समय एक बार उनकी पत्नी विनोबा से मिलने आई। विनोबा की तबीयत के समाचार पूछकर उन्होंने विनोबा से पूछा, क्यों, जेल में कैसा लग रहा है? विनोबा ने लाक्षणिकता में जवाब दिया,
1: आपने सर्कस देखा है ना? सर्कस में मनुष्य पशु पर जुल्म ढाते हैं, जेल में इससे उल्टा होता है। यहां पशु मनुष्य पर जुल्म ढाता है। जेल जीवन का विधायक दर्शन देखिए। सच्चा आश्रमी जीवन तो जेल में भी अनुभव किया जा सकता है। गिनती के कपड़े, पानी का मग और कांजी की कटोरी, इतने से बर्तन, इससे अधिक असंग्रह के व्रत का पालन कहां होगा? नियम से नहाना, खाना, काम करना और घंटी बजते ही सो जाना और उठना, क्रमबद्ध जीवन, बीमार पड़ने की छुट्टी नहीं, भोजन में रोज ही अस्वाद व्रत, इससे अधिक संयम व्रत हम अपने आश्रम में भी कहां पालते हैं? अपने आश्रमों में जेल की अच्छी चीजें अपनाकर सुधार करना होगा।
0: सिवनी जेल में राजनीतिक कैदी अपने रिश्तेदारों को पत्र लिख सकते थे, परंतु विनोबा को यह भेद मंजूर नहीं था, इसीलिए वे किसी को भी पत्र नहीं लिखते थे। 3 साल में उन्होंने किसी को पत्र नहीं लिखा था। एक दिन न जाने जेलर का क्या हुआ कि वो विनोबा के पास आकर बैठ गया और पूछने लगा,
2: आपके जीवन में दुख जैसी कोई चीज नहीं है?
1: हाँ है, परंतु वह दुख कौन सा है यह आप ही ढूंढिए। मैं आपको 7 दिन का समय देता हूं।

0: विनोबा जी, पिछले एक सप्ताह में मुझे कुछ मिल नहीं रहा, कृपया आप ही बताइए आपको कौन सा दुख है।
1: इस जेल में सूर्योदय और सूर्यास्त का दर्शन नहीं होता, यह मेरा सबसे बड़ा दुख है।

0: लोग पूछते कि विनोबा जी, आपको 1200 कैलोरी भोजन कैसे पर्याप्त मालूम होता है? तो हंसते हंसते विनोबा जी जवाब देते,
1: अरे भाई, मेरी खुराक कितनी है यह आप कैसे जानेंगे? इन 1000 कैलोरी के अलावा मैं गीता के 18 अध्याय खाता हूँ और उससे भी अधिक चारों ओर फैला हुआ विशाल आकाश खाता हूँ। अब आपको कुछ कहना है?

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं विश्व साहित्य में महात्मा गांधी की उपस्थिति की।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: ये वतन का
2: महात्मा गांधी अपने समय के अत्यधिक चर्चित व्यक्ति थे। उनका कहा और किया उनके समय में ही पूरी दुनिया तक पहुंच रहा था और विश्व समुदाय उस पर विमर्श कर रहा था। लेकिन ये तथ्य भी अद्भुत है कि उनके जीते जी उन पर जितना कुछ कहा और लिखा गया उससे कहीं अधिक उनके जाने के बाद उन पर चर्चा परिचर्चा हुई। लोगों ने अलग अलग माध्यमों से गांधी दर्शन को छूने की कोशिश की। तब से लेकर अब तक विश्व के सभी देशों के बड़े रचनाकार गांधी जी को अपनी रचनाओं में पिरो चुके हैं। महात्मा गांधी सन 1948 में शरीर तो छोड़ गए पर जीवित वे आज भी हैं। वतन का राग कार्यक्रम में आज आपके लिए हैं कुछ ऐसी ही कृतियों के अंश जिनमें जिंदा हैं गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद गांधी जी नोबेल पुरस्कार विजेता रोमिया रोला के अतिथि हुए। अपनी पुस्तक महात्मा गांधी द मैन हु बिकम वन विथ यूनिवर्सल बीइंग में उन्होंने लिखा है, महात्मा गांधी के अहिंसक संघर्ष को मैं अत्यंत उत्सुकता से दूर से ही देखता सुनता रहा। उनसे भेंट हुई तो लगा जो बहुत दूर से देख सुन रहा था उसे न केवल एकदम करीब से देख रहा हूं बल्कि उसे अपने भीतर धड़कता हुआ महसूस कर रहा हूं। गांधी मूर्तिमान सार्वभौम प्रेम है, अपने विरोधियों के प्रति इतनी ममता इतनी सहानुभूति मानव मात्र में संभव है, मैंने इससे पहले इसकी कल्पना कभी नहीं की थी। प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी आश्चर्य करेगी। वो विस्मयपूर्वक पूछेगी कि क्या ऐसा कोई हाड़ मांस का बना व्यक्ति सचमुच किसी युग में इस धरती पर चलता फिरता भी था। वो मुश्किल से ये विश्वास करेगी कि आदमी के ऐसे शरीर में देवता संत अथवा देवदूत का होना कभी संभव हुआ है। हम जानते ही हैं अमेरिका में अश्वेतों के अधिकारों के लिए संघर्ष के प्रतीक थे मार्टिन लूथर किंग। उन्होंने अपनी पुस्तक स्ट्राइड्स टुवर्ड्स फ्रीडम में लिखा है, मैं कई महीनों से सामाजिक सुधार की जिस पद्धति की तलाश में था वो मुझे प्रेम और अहिंसा पर गांधीवादी बलाघात से मिली। मुझे लगा कि मुक्ति संघर्ष के लिए वही तरीका नैतिक और व्यावहारिक दृष्टि से ठीक है। मार्टिन लूथर किंग स्वयं को गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहते थे। कैसा संयोग था ये भी कि उत्तराधिकार में उन्होंने महात्मा गांधी जैसी ही मृत्यु भी पाई। गांधी जी को स्मरण करते हुए अपनी कविता में वो कहते हैं, मुझे नहीं मालूम किस धातु का बना था वो, उसकी आंखों में गंगा जल ही नहीं टेम्स मिसिसिपी वोल्गा और वांगहो सभी तो लहराती थीं, उसमें हिमालय ही नहीं आल्प्स की ऊंचाई भी समाहित थी, उसमें हिंद महासागर ही नहीं काला सागर प्रशांत महासागर सभी अपनी गहनता लिए बैठे हुए थे।

मुरियल लेस्टर की एक पुस्तक है गांधी द वर्ल्ड सिटीजन। इस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी से अपने संवादों को लिपिबद्ध किया है। वो लिखती हैं, बापू ने मुझसे पूछा, तुमने तो विश्व भ्रमण किया है, बच्चों के लालन पालन की दृष्टि से तुम्हें कौन सा देश, कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक पसंद आई? मैंने उनकी आंखों में सहज अदम्य जिज्ञासा की चमक देखी। मैंने कहा, बापू, बच्चों के लालन पालन की दृष्टि से रूस देश स्वर्ग है। वो बच्चों का स्वर्ग है। वहां की व्यवस्था अपने बच्चों को एक मूल्यवान धरोहर की तरह सहेजती, संजोती और संवारती है। मैंने देखा गांधी जी की आंखों में एक ललक कौंध गई। उन्होंने कहा, बच्चों के उस स्वर्ग को मैं देखना चाहूंगा। उस समय मुझे लगा मैडोना की बाहों का विश्व शिशु मेरे सामने पुलक भरी किलकारी भर रहा है। उस प्रौढ़ शरीर में एक नन्हा फरिश्ता उतर आया था। सुप्रसिद्ध अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर जब भारत आए तो वो गांधी जी के साथ उनके आश्रम में 7 दिन तक रहे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, 7 डेज विद महात्मा गांधी। इस पुस्तक में उन्होंने गांधी जी से संबंधित अनेक रोचक प्रसंग दिए हैं। वो लिखते हैं, गांधी जी से हाथ मिलाते ही मेरे भीतर की अहंकार ग्रंथि जैसे पिघलने लगी। उन्होंने मुझे बात करने के लिए 1 घंटे का समय दिया था। बात दिन में ठीक 3:30 बजे शुरू हुई और 4:30 बजे, जबकि मेरा वाक्य अधूरा ही था, उन्होंने मुझसे कहा, बस समय हो गया, अब बात बंद। मैंने संसार के अनेक महान और व्यस्ततम लोगों से चर्चा की है, पर यह पहला व्यक्ति है जिसने मुझे इस तरह से टोक दिया कि मैं अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया। समय का इतना पाबंद, इतनी कठोरता से इसका पालन मेरे लिए एक अपूर्व अनुभव था। लुई फिशर आगे लिखते हैं कि अगले दिन आश्रम वासियों और गांधी जी के साथ भोजन के लिए मुझे पंक्ति में बैठाया गया। 1 वर्ग फीट का आसन था, उस पर मैं बैठा था। इस तरह पालथी मारकर बैठने का मेरा अभ्यास नहीं था। मेरे घुटने दुखने लगे। थाली में रोटी, साग और कुछ आम परोसे गए। मैंने जैसे ही खाना शुरू करना चाहा, गांधी जी ने मुझे रोक दिया। पहले प्रार्थना होगी, भगवान को भोग लगेगा, उसके बाद खाना शुरू होगा। प्रार्थना हुई, भगवान को भोग लगा, फिर भोजन प्रारंभ हुआ। लुई फिशर लिखते हैं, मैंने उतावलेपन के साथ आम में दांत लगाया, उसका रस मेरे कपड़ों पर छितर गया, मैं झेप गया। आम खाने का वो मेरा पहला अवसर था। गांधी जी ने मेरी ओर देखा, वो अत्यंत वात्सल्य भाव से हंसे और फिर उन्होंने मुझे आम को पिलपिला करके चूसने का तरीका बतलाया। मैं देख रहा था कि संसार की गूढ़तम समस्याओं पर चर्चा करते हुए, महानतम सिद्धांतों, आदर्शों और उसकी व्यावहारिकता पर चर्चा करते हुए भी उनका ध्यान किस तरह रोजमर्रा की उन छोटी छोटी बातों पर भी रहता था जिनकी हम अक्सर उपेक्षा कर जाते हैं।

मैक्सिको के शिल्पकार कानेसी, जिन्होंने मैक्सिको के राष्ट्रपिता हिदाल्गो की प्रतिमा भी बनाई थी, जब वो महात्मा गांधी को प्रस्तर, कांसे और मिट्टी में उतारने में तन्मय थे, तब वो एक अलग अनुभव से गुजरे। प्रतिमा निर्माण के बाद अपने अनुभव को उन्होंने अभिव्यक्ति दी। उन्होंने लिखा, मैं सदा से महान आत्माओं का चरित्र पढ़ता रहा। जितना जो कुछ पढ़ा है, मुझे गांधी उन सब में आगे नजर आता है। इस मूर्ति का निर्माण मेरे लिए एक आध्यात्मिक अनुभव है। इसने मेरे भीतर का मौसम बदल दिया है। मेरे भीतर एक अपूर्व पतझड़ घटित हुआ और उसके बाद नई नई कोंपलें फूटी, फूल खिल उठे और मैं एकदम नया हो उठा हूं। सुप्रसिद्ध अमेरिकन समाजशास्त्री और दार्शनिक पेट्रिम ए सोरोकिन ने अपनी पुस्तक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी गांधी जी को समर्पित की थी और उन्हें डेथलेस यानी मृत्युहीन बतलाया था। डॉक्टर रूफस जोन्स ने गांधी जी से मिलने के बाद उनकी तुलना संत फ्रांसिस से की थी। वेंडेल विल्की ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड में महात्मा गांधी को याद करते हुए लिखा है, वो जो सबके लिए सब कुछ त्याग चुका है, वही सबका प्रतिनिधित्व कर सकता है। इस समय सारे संसार में ऐसा एक ही व्यक्ति है और वो है महात्मा गांधी। उसने संसार के शोषितों और अभावग्रस्त लोगों के साथ स्वयं को एकाकार कर दिया है। वो पूर्ण सद्भावना से जब शोषकों, अत्याचारियों और अन्यायियों से टकराता है, तब वे अपने को असहाय महसूस करते हैं। उनके भीतर का दानव निरुपाय हो जाता है। जनवरी 1927 में सतारा के कुछ विद्यार्थी गांधी जी के पास पहुंचे और उनसे कहा, आप हमारे सौभाग्य से इस समय सतारा में हैं। हम बच्चों ने श्री हनुमान प्रतिमा की स्थापना की है, उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पधारकर आप हमें आशीर्वाद देने की कृपा करें। गांधी जी जब उन बच्चों के बीच गए, तब उन्होंने कहा, मैं भी हनुमान की तरह राम भक्त हूं। मेरे भी रोम रोम में राम हैं। मुझ में हनुमान जैसा सामर्थ्य तो नहीं है कि मैं अपना सीना चीर कर तुम्हें दिखा सकूं, मगर यदि कोई चाकू से मेरा सीना चीर दे तो तुम्हें यहां राम राम लिखा मिलेगा। यदि कभी मुझे गोली मार दी जाए तो मेरे भीतर से राम ही बाहर आएगा। और समय साक्षी है कि जब गांधी जी को गोली लगी, तब उनके अंतिम शब्द थे, हे राम।

इस दुखद घटना पर ब्राजील की एक कवियत्री सिसिलिया मेरलीज का अंतर्मन अत्यंत उद्वेलित हुआ और वो बरबस कह उठी मायाविनियों के नीले मोहक स्वर पर फैलाकर उड़ जाने वाले वे घोड़े अंतर्मन के वे सारे सुंदर स्वप्न सुमन जो सब के सब यहाँ पहुंचकर मुरझा गए हैं त्यागती हूँ मैं उन सबको कोने कोने से उड़ उड़कर पहुंच रही है ये खबर कि मारा गया वो दुआ देता लोगों को कि मारा गया वो दुआ देता लोगों को।

0: आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिव शेखर शुक्ल, समन्वय श्री संतोष कुमार वर्मा और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है बालकृष्ण जांभेकर। यूं तो कई श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है, लेकिन लकी ड्रॉ द्वारा चुने गए हमारे चार भाग्यशाली विजेता हैं
1: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से, राहतगढ़ सागर से श्री सौरभ अग्रवाल, जबलपुर से सुश्री वृंदा हिंगीकार और पटना बिहार से श्री राकेश कुमार।
0: आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारा आज का सवाल है कि गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे। सवाल एक बार फिर सुन लें, गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें मैसेज के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।